FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948

बैशाख मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 मई सन 2026। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। 5:57 होने को है हमारी आज की सभा। अब आरंभ होती है।

FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6 बजने को है, अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

0: में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती
4: वंदन वार।

आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है, जीवन भर विद्यार्थी बने रहें, गुण सीखने में कभी भी आलस्य ना करें और दूसरों की गलतियों से भी सीखें। ये था आज का चिंतन। अब लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोका के अंतर्गत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस कान भाग 188। बजकर 45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। सात बजे भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम हैं राही प्यार के।

8:15 पर त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक। नौ बजकर 30 मिनट पर आज के फनकार कार्यक्रम सुनेगा। ये आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत सुनेगा शायर और सेवानिवृत्त राजेश रेड्डी से बातचीत। 11 बजे रंग तरंग,

12 बजे यादों की महफिल और 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे सुनिए त्रिवेणी। 2:30 पर सुनेगा सदाबहार नगमे और 3 बजे सखी सहेली। सखी सहेली के अंतर्गत सुनेगा दोस्ती बिना जगसूना कहानी पद्मश्री भूरीबाई, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकार भूरीबाई के बारे में सुनिएगा। और मुझे कुछ कहना है, किस्तों पर खरीदारी कितनी सही और कुछ उपयोगी टिप्स

शाम 4 बजे हेलो फरमाइश, 5 बजे छाया गीत सुनेगा। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आपको फिर से बता दें, श्रृंखला सुनिएगा ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। 7 बजे पहुंची साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए, इसके अंतर्गत सुनेगा गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रिकर की बातचीत भाग दूसरा। 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिए नाटिका मंगल वरदान, लेखन कुंभेश श्रीवास्तव, निर्देशन है पुरुषोत्तम दारव्हेकर का। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार। 10 बजे चाहेगी 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 188।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं।

के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार और विविध भारती के स्टूडियो में एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं अनूप जी आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: किलक की उठत धाय गिरत भूमि लटपटा।

0: धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। श्री राम की महिमा का गान संत तुलसीदास ने जैसा किया है वैसा संभवतः अन्यत्र दुर्लभ है, और श्री अनूप जलोटा अपने कंठ से इन रचनाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। अपने सुरों से वे ऐसा चित्र खींचते हैं कि श्री राम बाल रूप में आंखों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। अनूप जी, हमें इस भक्ति रचना के बारे में बताइए जिसका हमने जिक्र किया,
1: ठुमक चलत रामचंद्र। सबसे पहले पंडित डीबी पलुस्कर जी ने गाया था, और ऐसा गाया था कि अब सब लोग उसे गाना चाहते हैं, लेकिन वैसा कोई नहीं गा सकता, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से गाया, जिस प्रेम से गाया, वो उनका ही कमाल था, कोई नहीं कर सकता वैसा। उसके बाद उस भजन को मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत प्रसिद्ध किया, क्योंकि उन्होंने कुछ अपना रंग उसमें जोड़ा। उसके बाद लता मंगेशकर जी ने उसे रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा गाया। मेरे पिताजी के साथ साथ मैंने भी गाना शुरू कर दिया था, और मैंने भी कुछ अपने ढंग इसमें डाले हैं, जिससे कि भजन औरों से

कमाल था, कोई नहीं कर सकता वैसा। उसके बाद उस भजन को मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत प्रसिद्ध किया, क्योंकि उन्होंने कुछ अपना रंग उसमें जोड़ा। उसके बाद लता मंगेशकर जी ने उसे रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा गाया। मेरे पिताजी के साथ साथ मैंने भी गाना शुरू कर दिया था और मैंने भी कुछ अपने ढंग इसमें डाले हैं, जिससे कि भजन औरों से बेहतर तो नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा अलग जरूर लगता है।

आयु है, वो अवस्था है कि अभी चलना सीख रहे हैं, चलने का प्रयास करते हैं, गिर जाते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं, कोई उठा देता है, फिर चलने लगते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो मेरा प्रयास है कि वो सुंदर दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाए।

गोस्वामी तुलसीदास जी को इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जो इस योग्य हो कि उसकी तुलना भगवान राम के चेहरे से हो। तो बहुत सोचा और अंत में यह कह दिया कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का चेहरा है। क्या

गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान राम के सुंदर चेहरे की तुलना किसी चीज से करना चाहते हैं। और कोई कवि होता तो कह देता कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जैसे सूर्य है, या जैसे चंद्रमा है, या जैसे गुलाब का फूल है, कमल का फूल है। लेकिन

0: बहुत सुंदर, सचमुच हम आंखें बंद करके बैठे थे और जिस तरह से आपने शब्द चित्र उकेरा, आंखों के सामने उपस्थित हो गए थे श्री राम जी। अनूप जी, श्री राम भजन आपने खूब गाए हैं और खूब श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से उनकी कौन सी महिमा गाने में ज्यादा आनंद आता है, उनके किस रूप को आप ज्यादा गाना पसंद करते हैं?
1: भगवान राम के कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जैसे शबरी हैं, जैसे केवट हैं। तो केवट का एक भजन है, मैं बहुत गाता हूँ, तो यदि आप अनुमति दें तो मैं वो भजन आपको
0: बहुत सुना। अच्छा लगेगा।
1: राग गुजरी तोड़ी के रंग को लेकर इसे कंपोज किया गया है। कभी कभी भगवान को भी

अच्छा केवट का तो यही काम है, इसको कुछ मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। भगवान राम ने पूछा, जरा स्पष्ट करो, कुछ बात समझ नहीं आई। केवट बोला,

0: ऐसी लागी लगन। आप सुन रहे हैं जानी मानी गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम के गाए इस गीत से।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम का गाया रेल का डब्बा फिल्म का गीत। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और गुलाम मोहम्मद ने इस गीत की धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए पतिता फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: मिट्टी से खेलते हो, बार बार किस लिए? लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे पतिता फिल्म से। संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में परछाई फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। नूर लखनवी ने इस गीत को लिखा था और सी रामचंद्र ने इस गीत की धुन बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अब समय है कि एक बहुत छोटा सा अंतराल लिया जाए। अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे हम।

अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। सुनते हैं अब दीवाना फिल्म का गीत।

0: दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था, नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

बीती एक ऐसी बोल रही दुनिया, दाग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

जग्गू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी मधुबाला चावेरी की, भरत व्यास की रचना आपने सुनी और हंसराज पहल का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का भूलिए बिसरिए गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत सविता सिंह को दीजिए। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती से। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी को नमस्कार, सविता सिंह का।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद

लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने तर्स बनाई थी। लीजिए अब सुनिए जख्मी फिल्म का गीत। ये आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, गौहर कानपुरी की ये रचना है और बप्पी लहरी की तर्स।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

कब मिलोगी। यह फिल्म का नाम, जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर, मुकेश की आवाजें थी और संगीतकार थे आर डी बर्मन। लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में हाथ की सफाई फिल्म का गीत। गीत गुलशन बाबरा का है, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

की सफाई फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों की आवाजों में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मुकेश के और साथियों की आवाज़ों में आपने अभी सुना। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

0: भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता

0: आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त सभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता 26 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, दिल्ली।
1: कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति

0: ठीक की जाएगी।
1: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
3: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
4: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्य सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
7: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
8: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में

0: 100 बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी।

0: चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है रंग पर। साथियों, इस संसार में जो कुछ भी भौतिक रूप से उपस्थित है वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। हम जिस भी चीज को देख रहे हैं वो उसका अपना रंग नहीं है, हम बस परावर्तित प्रकाश के रंग को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि घास हरी है, लेकिन घास हरी नहीं है, ये हरे रंग के प्रकाश को लौटा रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें हरी घास नजर आती है। आकाश नीला है? नहीं, आकाश नीला नहीं है। हमें ये पता है कि अंतरिक्ष तो नीला अंधेरा है, वहाँ नीला जैसा कुछ भी नहीं है। आकाश अगर नीला नजर आता है तो उसकी वजह बिल्कुल अलग है। नीले रंग का अपवर्तन गुण बाकी रंगों से बिल्कुल अलग है, इसी वजह से आकाश नीला है।

इस संसार में किसी भी चीज में रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष, पूरा संसार रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को भी हम देखते हैं वो सभी रंगहीन है। रंग तो केवल प्रकाश में होता है, रोशनी में होता है। रंग वो नहीं है जो वो दिखता है, बल्कि वो है जो वो त्यागता है। जो भी रंग बिखेरते हैं वही हमारा रंग हो जाता है। हम जो अपने पास रख लेंगे वो हमारा रंग नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वही हमारा गुण हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व हो जाता है।

रंगों से परे है वो रंगहीन नहीं है, वो पारदर्शी है, वैराग्य है, जिसका मतलब है कि हम ना तो कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परावर्तित करते हैं, यानी हम पारदर्शी हो गए हैं। अगर हम पारदर्शी हो गए हैं तो हमारे पीछे की कोई चीज अगर लाल है तो हम भी लाल हो जाते हैं, अगर हमारे पीछे मौजूद कोई चीज नीली है तो हम भी नीले हो जाते हैं। हम जहां भी होते हैं उसी का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज में फंसते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम पारदर्शी हैं और वो रंग एक पल के लिए भी हमसे चिपकता नहीं है। हम शांत, संतुष्ट, उत्साही और जिज्ञासु रहते हैं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: प्रणव विश्वास हंसिकाई और स्वानंद किरकिरे की आवाजों में आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम था राजनीति और इस गीत को स्वानंद किरकिरे ने लिखा था और शांतनु मोइत्रा ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये साली जिंदगी है का फिल्म का गीत। इसे संगीत से संवारा था निशात खान ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक।

फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। इरशाद कामिल का लिखा हुआ रांझणा फिल्म का गीत आप

रंजना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी जावेद अली, कीर्ति सरगाथिया, और इसे इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था। ए आर रहमान ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लुटेरा फिल्म का गीत, मोनाली ठाकुर की आवाज।

मोनाली ठाकुर की आवाज में आप सुन रहे थे लुटेरा फिल्म का गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। लीजिए चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए डंकी फिल्म का गीत, अरिजीत सिंह की आवाज। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, प्रीतम का संगीत।

0: दंगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, अरिजीत सिंह की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।
1: सुनिए
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सीताराम साहू, संतोष शुक्ला और साथी।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार पहुंचत है जन जन के द्वार।
2: कार्यक्रम लोक संगीत में पहले सुनिए सीताराम साहू के स्वर में ये लोकगीत।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित।

0: जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: लीजिए सुनिए राधा साहू और रमेश यादव के स्वरों में नाचा गीत।

0: राधा साहू और रमेश यादव के स्वरों में सुनिए ददरिया।
1: झूले तोर मुंगरा

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे सीताराम साहू, संतोष शुक्ला और साथी। FM बैंड 101.6 MHz पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सबरंग।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। संत कबीरदास जी के इस दोहे के साथ श्रोताओं, स्वागत है आपका अदिति संग सबरंग में। कहते हैं ना, नमक कम हो तो खाना फीका लगता है, और अगर वही नमक जरूरत से ज्यादा हो जाए तो सबसे स्वादिष्ट खाना भी अच्छा नहीं लगता। बस जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है, हर चीज़ अपनी सही मात्रा में सुंदर लगती है। प्यार हो, गुस्सा हो, काम हो, आराम हो, यहाँ तक कि खामोशी भी। बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर अपनी बातों की अहमियत खो देता है, और जो हर समय चुप रहे वो धीरे धीरे लोगों से दूर हो जाता है। बहुत ज़्यादा काम इंसान को उसका सुकून छीन लेता है,

और बहुत ज़्यादा आराम उसके सपने। लेकिन आज की ज़िंदगी में हमने हर चीज़ में ज़्यादा जोड़ लिया है, ज़्यादा सोचने लगे हैं, ज़्यादा तुलना करने लगे हैं, ज़्यादा कमाने की दौड़ में छोटी छोटी खुशियाँ भूलने लगे हैं। पहले लोग थकते शरीर से थे, अब लोग थकते दिमाग से भी लगे हैं, क्योंकि मन को आराम देने का समय ही नहीं बचा। हर समय कुछ ना कुछ चल रहा है, मोबाइल में, दिमाग में, ज़िंदगी में, और इसी भाग दौड़ में इंसान ये भूल गया कि ज़िंदगी का असली सुख बहुत ज़्यादा पाने में नहीं, बल्कि जितना ज़रूरी है उतना होने में है। क्योंकि ज़िंदगी अति से नहीं, संतुलन से खूबसूरत बनती है, क्यों है ना?

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: श्रोताओं, पहले सुबह में एक अलग तरह की शांति हुआ करती थी। खिड़कियां खोली जाती थी, आंगन में धूप देखा जाता था, पेड़ों पर बैठी चिड़िया की आवाज़ सुनी जाती थी। लेकिन अब सुबह की शुरुआत अक्सर सूरज से नहीं, मोबाइल की रोशनी से होने लगी है। आँख खुलते ही उंगलियाँ स्क्रीन पर चलने लगती है। कौन कहाँ घूमने गया, किसने क्या खरीदा, किसकी ज़िंदगी कितनी खुश और परफेक्ट दिखाई दे रही है। इतनी तस्वीरें, इतनी खबरें, इतनी राय, इतनी आवाज़ें कि धीरे धीरे इंसान अपने ही मन की आवाज़ से दूर होता चला जाता है। श्रोताओं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर ऐसा महसूस कराया जाने लगा है कि अगर ज़िंदगी हर पल खूबसूरत नहीं दिख रही, अगर हर तस्वीर मुस्कुराती हुई नहीं है, तो शायद कुछ पीछे छूट रहा है। जबकि सच्चाई हमेशा तस्वीरों जितनी चमकदार नहीं होती। हर खूबसूरत तस्वीर के पीछे कोई अधूरी

कहानी भी होती है। धीरे धीरे ये भी महसूस किया जाने लगा है कि ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी मन को शांत कम, उलझा ज़्यादा देती है। हर खबर जान लेना, हर पल दुनिया से जुड़े रहना शायद उतना ज़रूरी नहीं होता जितना कभी कभी अपने भीतर लौट आना होता है।

दोस्तों, सच कहे तो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत ज़रूरतों में से एक है आराम। दिन भर की थकान के बाद मिलने वाला सुकून, अपनों के बीच बिना किसी जल्दबाजी के बैठना, इन सब में एक अलग ही राहत महसूस होती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब आराम धीरे धीरे आदत बन जाता है तो कोशिशें कम होने लगती है। आजकल लोग उतने थके हुए शायद नहीं हैं जितना सुविधाओं के आदी हो चुके हैं। थोड़ा सा काम होने पर ही थकान महसूस होने लगती है। छोटी छोटी परेशानियों से भी मन जल्दी हार मानने लगता है और फिर धीरे धीरे सपनों की जगह बहाने लेने लगते हैं। और वो कहते हैं ना, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन आलस इंसान को वहीं रोक देता है। आराम की ज़रूरत हमेशा से ही रही है, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ताकत अक्सर मेहनत से ही आती है। कई बार ऐसा भी महसूस किया जाता है कि दिन भर कुछ ना करने के बाद भी थकान बनी रहती है, क्योंकि शरीर से ज़्यादा मन थकने लगा लगा है। निदा फाजली कहते हैं, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन और फिर थोड़ा मुकद्दर तलाश कर।

श्रोताओं, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना उसकी खूबसूरती कम करने लगता है। ज़िंदगी को जितना समझने की कोशिश की जाती है, उतना महसूस होता है कि ये कोई युद्ध नहीं है जहाँ हर पल जीतना ज़रूरी हो, बल्कि ये तो एक संतुलन है, एक ऐसी लय जिसमें कभी तेज़ चलना पड़ता है तो कभी ठहरना भी पड़ता है, जहाँ काम भी हो लेकिन अपनों के लिए समय भी हो, जहाँ सपने भी हो लेकिन मन की शांति भी बनी रहे, जहाँ भीड़ भी हो लेकिन थोड़ा खुद के लिए समय भी, क्योंकि जहाँ संतुलन हो वहाँ सुकून भी होता है। क्यों, है ना? श्रोताओं, ये था आज का सबरंग। अब दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त अदिति को इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरंग। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 9:55 होने को है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली प्रवास पर रहेंगे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल सुबह राजधानी रायपुर में वाकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। धान के एमएसपी में प्रति क्विंटल 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान सहित विभिन्न खरीफ फसलों के एमएसपी में की गई उल्लेखनीय वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं। इस दौरान वे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शाह को बस्तर में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान और बस्तर मुन्ने अभियान की जानकारी देंगे। सरकार ने इस साल सितंबर महीने या अगले आदेश तक चीनी सहित खांड, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार चीनी निर्यात नीति को प्रतिबंधित से निषिद्ध कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने इस मामले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। अपने प्रवास के पहले दिन श्री पासवान ने नवा रायपुर में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में श्री पासवान ने राज्य में वीबी जी रामजी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर कल 15 मई को वाकाथॉन का आयोजन करेगा। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि इस वाकाथॉन में आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, समाचारवाचक, आउटसोर्स कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वाकाथॉन की शुरुआत सुबह 7 बजे आकाशवाणी भवन सिविल लाइन से होगी। यह वाकाथॉन घड़ी चौक, मोतीबाग, सुभाष स्टेडियम और ओसीएम चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न होगा। यह आयोजन ऑल इंडिया रेडियो की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की स्मृति में किया जा रहा है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह कल 15 मई को आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल रमेश डेका करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। दीक्षांत समारोह में 1880 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। चांपा रेलवे स्टेशन पर 4थी रेल लाइन जोड़ने के लिए 7 से 19 जून तक काम चलेगा। इस दौरान 63 मेल एक्सप्रेस और 10 मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके अलावा 6 ट्रेनें बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी। दुर्ग जिले के पुराना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन के नीचे खेल रहे 18 वर्षीय किशोर की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। जशपुर जिले के दोकड़ा क्षेत्र में पुलिस ने एक पिकअप वाहन की तलाशी के दौरान 200 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। आरोपी इस गांजे को कच्चे आम की क्रेट के नीचे पैकेटों में छिपाकर ले जा रहे थे। इस गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है और संस्कार भारती द्वारा कल से

0: राजधानी रायपुर के महाराष्ट्र मंडल में 3 दिवसीय रंग संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली प्रवास पर रहेंगे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल सुबह राजधानी रायपुर में वॉकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 10 बजे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करते हैं।
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
2: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
3: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू ले के दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद

0: 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, विविध भारती परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
0: जी, वो बहुत प्यारा जमाना था। और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
1: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
0: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से ये काम हुआ और हो रहा है।
1: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
0: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में, और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाज़ें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूँगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे, उनकी आवाज़ सुना, आम अनाउंसर, न्यूज़ रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, हाँ। कोई जानता ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना, रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू हुआ था।
1: जी जी,
0: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक कवि के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये, हाँ। कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबाने का फिल्म म्यूजिक का तो खैर कहना ही क्या
1: जी।
0: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
1: जी,
0: और न सिर्फ आऊंगा
1: बल्कि हेड करेंगे
0: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल में क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
1: क्या बात है, क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युवाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युवाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युवाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युवाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था, या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक

0: लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
0: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
1: गंगा प्रसाद जी,
0: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी,
0: और
1: जी,
0: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
1: हम यहां एक पल के लिए रुकना चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है, इसके बारे में
0: बिल्कुल सही है। वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्ट सेंट्रल ग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का
1: सेतु। बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
1: ओके,
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या बात
0: है, इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
1: जी,
0: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको?
0: नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्ले लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे, और अच्छा चल रहा है मुझे
1: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हायरे वो दिन क्यों ना आए।
0: हाँ, हाँ, हाँ।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुनाओ?
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो वो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें वो राज वाला वो भी था
0: जी,
1: जंजर शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप
1: हाँ,
0: पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो। राज मंदिर, जैम, पोले विक्ट्री, ये सब उस वक्त तो फिल्में भी मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी
0: जी
1: बात होती थी,
0: बिल्कुल
1: है ना? इसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो जमाना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे। और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी होता था।
0: जी
1: और
0: ये
1: तो
0: हुआ है,
1: हमारा
0: लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ है।
1: उपकार जैसी फिल्म हमने
0: जी
1: देखी थी,
0: वाह वाह
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें,
0: जी
1: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, है ना? तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना, और स्कूल से भाग के भी देखना, और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब
0: बिल्कुल
1: दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध
0: जी
1: भारती चल रहा है, फिल्म भी गा रहे हैं, कभी कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था, और
0: जी
1: म्यूजिक ही था,
0: जी
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना
1: ये गाना
0: चलता
1: चलता नहीं
0: था।
1: था,
0: जी
1: मैं गाता
0: खुद
1: रहता
0: गाते थे।
1: था। तो वो घर वाले भी बार बार, तो मुझे फिल्मी गानों का शौक,
0: जी
1: गुनगुनाने

0: का शौक वो बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुनें भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वो एक अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है। और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका
0: हाँ, मेरे
1: जारी
0: कहने
1: रहा
0: की
1: है।
0: गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई सब आज भी गायक हैं, वो
1: जी
0: सिखाते भी हैं। तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहां जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया।
1: जी
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने ही उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प।
1: जी
0: वो अभी भी चल रहा है, वो मेरे बाकी जो दोस्त हैं वो चला रहा है, हरी नारायण उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था
1: वाह वाह,
0: और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: वाह वाह,
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको
1: हाँ।
0: उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का ड्रामा कंपटीशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
1: हाँ।
0: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज
1: बिल्कुल।
0: इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं। होली हो, ईद हो और गणेश उत्सव हो, तो गणेश उत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेश उत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं हम।
1: वाह वाह,
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा। तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका की शाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
1: हाँ,
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा।
1: वाह
0: रविंद्र
1: वाह
0: मंच पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब पसंद किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे। कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौर
0: नहीं,
1: में?
0: मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ, लेकिन
1: अच्छा,
0: उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा
1: जा
0: चुके थे
1: चुके
0: तब।
1: थे उस दौर
0: हाँ,
1: में जब आप
0: तो वो
1: सक्रिय हुए।
0: तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है,
1: जी
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी। फिर
1: बिल्कुल
0: हमारे जो पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा
1: जी, बिल्कुल।
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही। तो लेकिन
1: हाँ
0: इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत
0: बिल्कुल,
1: बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे। किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर 1 हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहाँ पे जो आधा आधा घंटे के या 1-1 घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपने नाम
1: जी
0: सुना होगा,
1: बिल्कुल,
0: गणपत लाल डांगी,
1: हाँ,
0: जिनका हवा महल में काफी
1: आज भी
0: होता
1: हवा महल में
0: हाँ
1: उनके नाटक
0: है ना,
1: ब्रॉडकास्ट होते हैं।
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेस लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
1: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था, वो
1: जी
0: सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको, और आज भी
1: अच्छा
0: शायद वही होगा कि
1: जी,
0: अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहाँ पे कोई कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
1: जी,
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान
1: अखबार।
0: का उस वक्त राजस्थान का नंबर 1 अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था,
1: जी
0: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा या, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था और उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने

0: शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पे लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है,
1: क्या बात है।
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई। मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया, फिर
1: तो वहां
0: जयपुर।
1: तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकिर,
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो,
1: ऐतिहासिक
0: हाँ।
1: स्टेशन है जलंधर।
0: और वहां पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल,
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन
1: यस
0: सिंह मीशा,
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी में अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पातर, ये सब लोग वहाँ पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पातर लुधियाना से, ये सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था, एक तरह से
1: बिल्कुल,
0: पंजाब का जयपुर था वो। वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था,
1: जी
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और मेरे जो सीनियर थे वो सारे से पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे, हिंदी का
1: हाँ
0: प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं
1: दिक्कत
0: थी,
1: नहीं
0: मतलब
1: थी जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर
0: एक
1: में
0: साल,
1: रहे
0: एक साल।
1: जी, और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा,
1: जी
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे,
1: जी
0: जो सुरजीत पातर, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, मेरे सब कुछ में
1: बिल्कुल।
0: मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था,
1: जी
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ। और एक गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलनों में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ, तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था, या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार थे,
1: बिल्कुल
0: उनके
1: बिल्कुल।
0: नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तक लोग
0: तो
1: सुनते
0: हाँ,
1: थे और सबसे
0: तो
1: लास्ट में उन्हें
0: हाँ,
1: पढ़वाया
0: तो
1: जाता
0: जी,
1: था।
0: और मेरा वो शुरुआती दौर था,
1: जी
0: तो नीरज जी थे वहाँ पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी,
1: अरे
0: तो ये
1: गजब,
0: एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: क्या
0: मिला
1: बात
0: जो।
1: है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ा इधर उधर,
1: जी
0: तरन्नुम में सुनाऊँ उसको
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल
0: जी।
1: स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में

0: नवगीत का शुरू हुआ था तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाँफती हवाओं
1: हाफती हवाओं
0: से,
1: से क्या बात है।

0: तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता।
1: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
0: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल
1: हाँ,
0: बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना, हमारे
1: मिनिमम
0: नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सलून में भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था,
1: हाँ
0: पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं,
1: जी,
0: पिताजी का एक एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे
1: तो
0: या
1: आपके
0: था।
1: जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा
0: हाँ
1: है कि नहीं, क्या
0: हाँ
1: चल रहा है मन
0: तो बस
1: में?
0: वो उनको सूचना जरूर, और हमारे संवाद माँ से होता था,
1: जी
0: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना साहब, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ, जो पिताजी से एक घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश
1: जी जी
0: होते थे,
1: जी
0: लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे,
1: वो
0: बताते
1: दौर भी
0: नहीं
1: ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता
0: थे।
1: था। मां की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, और आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी,
0: नहीं
1: देकर
0: बिल्कुल, ये
1: गई।
0: पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया, पिता
1: जी
0: ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार हैं, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से, अगर आप देखें तो कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, बड़ा
1: बाप रे,
0: कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठ के
1: आमने
0: सुना
1: सामने
0: है,
1: देखा। जी
0: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
1: बाप रे,
0: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए, संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा, तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूँ तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना, वो एक मिनी भारत था वो,
1: जी,
0: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था, मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से
1: ये तो एक नया खुलासा है हमारे
0: एक था।
1: लिए।
0: मतलब खेलना कूदना ये तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना,
1: हाँ,
0: किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
1: तंग
0: आते
1: कर
0: जाने
1: लेना।
0: को तंग करना या मस्ती करना,
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
1: शिकायत आती
0: शिकायत माँ के पास आती थी कि
1: थी।
0: आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
0: हाँ मेरे बड़े भाई साहब थे,
1: हाँ
0: मैं
1: जी
0: नंबर दो था, तो
1: जी
0: पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे, घरेलू
1: बिल्कुल
0: नाम,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू।
1: जी,
0: खैर तो वो छोटू की शिकायत जो
1: रोज आ रही
0: है
1: है।
0: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था, तो वो माँ थी जो
1: प्रोटेक्शन।
0: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और
1: हाँ।
0: पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो, तो वो मैं भूल नहीं
1: उसका जिक्र ना ही
0: सकता।
1: करें तो अच्छा।
0: तो ये एक अच्छा बचपन बीता,
1: जी
0: और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
1: अरे
0: मतलब घर में
1: गजब।
0: वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे,
1: हाँ, वो अपनी दुनिया
0: वो
1: उनकी।
0: अपनी दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए, मतलब बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो, और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
1: क्या बात है! और क्या आपकी रचनाओं में मां झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास, मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उनकी
1: बिल्कुल
0: कॉलोनी थी, तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है! इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहां आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं,
0: हाँ
1: एक था बचपन।

0: क्या बात है, क्या बात है।
1: थैंक यू,
0: जाहिर है कि
1: धन्यवाद।
0: इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी, और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा
1: ओ
0: होगा।
1: बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का
0: जी
1: आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: नहीं, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य ने फिल्मों में भी लिखा।
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तुम्हें देखते से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो, क्या अद्भुत है। हाँ? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ
0: गजब,
1: बैठता
0: गजब,
1: था।
0: गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन है ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, उसने मंची नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था मेरे, निर्मल वर्मा, भीष्म सहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नामवर सिंह जी भी, मतलब हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारा अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों का वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे।
0: जी जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात
1: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमरूर लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा

0: गज़ल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी। मौलवी साहब आते थे, मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गज़ल में शामिल हो गया। गज़ल को मैंने अपनाया और शायद फिर गज़ल ने मुझे भी अपना लिया।
1: क्या प्यारी बात है। तो शुरुआती गज़लों में से कोई एक हमें सुनाइए।
0: मेरा सौभाग्य रहा यूनुस की ये जो गज़ल पंकज दास साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
1: जो आपकी पहचान के साथ चिपकी हुई है।
0: वो जयपुर की गजल है।
1: वाह,
0: वो शुरुआत
1: कमाल।
0: हाँ,
1: ये मुझे नहीं पता था। और ये मेरे लिए हैरत की बात है कि वो आपकी शुरुआती गजल है।
0: नहीं, यूनुस इसलिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए वो, कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी
1: जी।
0: गजल की विधा को मैंने
1: आपने शिफ्ट किया है।
0: हाँ, गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुनाना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: बोले ये, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के भक्ति के आखिर में आती है
1: जी।
0: और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है।
0: तो खुद
1: और
0: मैंने
1: मुश्किल भी है, बहुत
0: हाँ
1: मुश्किल
0: हाँ मुश्किल भी है, तो उसको निभा ले जाना। और उसको तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें तो
1: जरूर सर, अरे स्वागत है बिल्कुल।
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन
0: हाँ,
1: अलग है
0: जो मैं
1: जी।
0: सुनाता हूँ और जिसने मुझे मुशायरों में पहचान दी वो ये गजल।
1: स्वागत है।

0: का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शाख। और ये खास शेर है वो।
1: स्वागत है।

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस, इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला।
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है कि बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं रहे,
1: जी
0: अब नहीं, बहुत हो
1: जी
0: गया, है
1: जी
0: ना। ये
1: जी
0: आता है, फिर
1: सबके
0: करते हैं
1: साथ, सबके साथ
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो बस बहुत हो गया।
1: हाँ,
0: लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: ये, तो
1: गीत
0: फिर
1: है, अजब।
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कि कैसे
1: जी,
0: जान बचाते फिर रहे थे हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह।
0: अमीर हो गरीब सबका। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा

0: मिट्टी का फना होने से डरता
1: क्या बात है
0: है।
1: सर, हम बहुत
0: थैंक
1: खुश नसीब हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में आप
0: नहीं,
1: मौजूद हैं
0: मेरे
1: और
0: आप लोगों का
1: आपसे ये
0: प्रेम
1: सुन
0: है
1: रहे
0: और
1: हैं।
0: मेरी खुशनुमा।
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने
0: थैंक
1: पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुनी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं और जलंधर में 1 साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर,
1: जी जी
0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये कि मैं शुरू से ही होम सिक रहा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: मतलब जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा
1: हाँ,
0: शहर था, बहुत प्यारे लोग थे, अच्छा
1: अच्छा खान पान था।
0: खान पान था, अच्छा मौसम था,
1: जी
0: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापस, है
1: जी
0: ना। तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और मैं वो सुन ली गई, मान ली गई और मैं वापस अपने शहर में आ गया जयपुर।
1: वाह
0: तो मैं
1: वाह,
0: वहाँ फिर वापस शायद 5 साल जयपुर रहा उसके।
1: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाणी करते थे, वहां आपकी वापसी
0: बिल्कुल
1: होती
0: सही
1: है और अब
0: बात।
1: आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूं है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: और वहीं
1: बिल्कुल
0: मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूं
1: जी
0: और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है।
1: जी
0: तो और क्या टीम थी वो वहां पे,
1: बिल्कुल
0: क्रीम, बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और वो जो जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ,
1: जी जी जी
0: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था।
1: जी जी जी
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, ये हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था,
1: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे तो
0: पला
1: आप
0: बड़ा
1: सब
0: था।
1: जानते
0: और
1: थे
0: फिर
1: और
0: उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले,
1: जी
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो था ही था, सब कुछ। नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ, म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ। अभी तो नहीं हो रहा है, उस वक्त जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के एक दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने
1: कॉन्सर्ट्स
0: प्रोग्राम
1: होते
0: कर,
1: थे
0: कॉन्सर्ट होते थे,
1: जी
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह, क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: उसमें एक महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना,
1: जी जी
0: उसका हमने रेडियो नाटक रूपांतर किया
1: वाह,
0: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों के द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया।
1: वाह,
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब।
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी, यूनुस, उसके आश्चर्य की बात ये थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया। वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब
1: बिल्कुल
0: उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है। गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का,
1: जी
0: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, और मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए लोगों ने
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में।
1: अरे
0: तो
1: बाप रे
0: गाने संस्कृत में हैं
1: जी,
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मैंने कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ चुके इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है
1: हाँ,
0: ये
1: तो बहुत
0: हम,
1: मुश्किल काम है।
0: बहुत मुश्किल। तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और
1: जी
0: समझे भी, मतलब
1: वाह
0: गीत
1: वाह,
0: गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिग्रही उड़ीसा में,
1: जी जी
0: तो वो करते रहे और वो का बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहाँ पे। लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी। तो मैंने उसको बाकायदा एक

0: क्योंकि फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि
0: तो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
1: वाह वाह वाह, तो ये पूरा जयपुर का दौर था।
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी
0: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो अडॉप्टेशन किया, वो किया, तो ये दो बड़ी थे कहना चाहिए।
1: क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहां किए। इसके अलावा वहां विकल्प भी चलता रहा आपका, नाट्य समूह?
0: नहीं।

0: से अपने
1: हाँ अरे
0: अपने अपने आप को झोंक दिया था।
1: हाँ, मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो मैलेस मैंने किया
0: जी,
1: जी।
0: और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
1: हाँ उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का,
0: जी,
1: जो गूगल का
0: इंस्पेक्टर
1: उन्होंने,
0: जनरल का।
1: हाँ वो नौटंकी शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया, डायरेक्शन
0: वाह,
1: भी किया और वो भी किया
0: तो
1: जनरल।
0: संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार,
1: हाँ इसमें करनी है वाला बात नहीं था, मतलब अंदर से
0: जरूरत।
1: होता था,
0: जी,
1: अंदर से होता था कि ये मैं करूं, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी
0: बिल्कुल,
1: कि हाँ कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि
0: ये मैं
1: ये
0: करता
1: हाँ
0: हूं।
1: इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है कि
0: बिल्कुल,
1: आप तो उसी तरह से वो, चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
0: जी
1: जो स्टाफ में थे, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती
0: बिल्कुल
1: है
0: होती है।
1: ना,
0: जी
1: जानते होंगे, और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स पे बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है,
0: जी
1: उस वक्त
0: जी
1: 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी,
0: जी,
1: तो उन्होंने मुझे छूट दी।
0: कि नहीं, आप करो।
1: हाँ मतलब वरना ये होता नहीं है ये,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल,
1: 4 कंपोजर हैं, आप स्टाफ में मौजूद हैं
0: तो आप
1: और
0: उनको।
1: उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं,
0: जी,
1: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो मैं एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
0: हाँ
1: एक बार मैं बताऊं कि जो महादेव वर्मा का गीत
0: हाँ
1: मैं नीर भरी दुख की बदली
0: हाँ
1: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना,
0: जी
1: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था,
0: जी
1: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता किसी के
0: हाँ
1: लेके उसको कोई पढ़ता था और गीत होता था कोई गाता था,
0: वाह
1: तो उस
0: वाह
1: तरह का एक
0: वाह,
1: प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
0: क्या बात है,
1: कबीर को कंपोज किया,
0: वाह
1: इनको स्टेज
0: वाह,
1: किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
0: ये चीजें
1: हुआ।
0: चलती रहीं लगातार, ये बहुत अद्भुत बात है। ये एक अलग पूरा एक पक्ष है, हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
1: चलिए मैं गुनगुना देता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
0: वाह वाह,
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,

ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: सुनो जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।
2: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम मधुरिमा।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम मधुरिमा में पहले सुनिए गोनीता गांधी की आवाज में कपिल सिब्बल की रचना, संगीत ए आर रहमान का है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026। सरकार

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरक्रिया लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लीजिए अब सुनिए फर्रुख बेग की आवाज में MS राही की रचना।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

कार्यक्रम मधुरिमा के अंत में सुनिए जावेद अख्तर की रचना लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत मयूरेश पाई ने दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत और गज़लों का कार्यक्रम मधुरिमा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 11:55 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की।

0: दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 362 संदिग्ध म्यूल खाता धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल सुबह राजधानी रायपुर में वॉकेथॉन का आयोजन किया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। धान के एमएसपी में प्रति क्विंटल 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान सहित विभिन्न खरीफ फसलों के एमएसपी में की गई उल्लेखनीय वृद्धि स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं। इस दौरान वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शाह को बस्तर में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान और बस्तर मुन्ने अभियान की जानकारी देंगे। राज्यपाल रमेश डेका से आज लोकभवन में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान कल से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। अपने प्रवास के पहले दिन श्री पासवान ने कल नवा रायपुर में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में श्री पासवान ने राज्य में वीबीजी रामजी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में 362 संदिग्ध म्यूल खाता धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश और समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर की गई। जांच में थाना सुपेला, उतई और पुरानी भिलाई क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के खातों में साइबर ठगी की रकम के लेन देन के सबूत मिले। पुलिस ने बताया कि इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को छिपाने और ट्रांसफर करने में किया गया। मामले की जांच जारी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम दौंजरा के बिझरवार में पारिवारिक जमीन विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। जानकारी के अनुसार पैतृक जमीन पर लगे बांस के पेड़ों की कटाई को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। कहासुनी बढ़ने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर टंगिया जैसे धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस घटना में दोनों पक्षों के कुल 7 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर कल 15 मई को वॉकेथॉन का आयोजन करेगा। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि इस वॉकेथॉन में आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी, समाचार वाचक, आउटसोर्स कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वॉकेथॉन की शुरुआत सुबह 7 बजे आकाशवाणी भवन सिविल लाइन्स से होगी। ये वॉकेथॉन घड़ी चौक, मोतीबाग, सुभाष स्टेडियम और उसीएम चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न होगा। मौसम विभाग के अनुसार वातावरण में नमी और पश्चिम से पूर्व तक बनी एक द्रोणिका के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव आ रहा है। रायपुर समेत बिलासपुर, अंबिकापुर, बस्तर, रायगढ़ और जशपुर के कई इलाकों में कल बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश और गरज चमक की गतिविधियां बनी रहेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने धान सहित 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 362 संदिग्ध म्यूल खाताधारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल सुबह राजधानी रायपुर में वॉकेथॉन का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
2: भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश

0: मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए याद करते हैं राजकुमार बड़जात्या, जो कि निर्माता निर्देशक रहे, उन्हीं की फिल्मों में से चुनिंदा कुछ गीतों को सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में।

इसी लाइफ में इस फिल्म से हम सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में, मनोज मुंतशिर के बोल और मीत ब्रोजनजान के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में, जो कि है हम साथ साथ हैं फिल्म से। हरिहरन, घनश्याम वासवानी, प्रीतम राव, संतोष तिवारी की आवाज में, जिसे रविंद्र वाल ने लिखा है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या को। तो आइए सुनते हैं उनके ही द्वारा रची गई फिल्मों में से फिल्मों के गीत। अगला गीत होगा चितचोर फिल्म से, येशुदास की आवाज में रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के ही संगीत के साथ।

0: सौदागर फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों नाज मुहब्बत किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आइए सुनते हैं बहुत सुंदर सा नगमा अगली गी फिल्म के साथ में, जिसे निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या जी के द्वारा बनाया गया है। ये है प्रेम रतन धन पायो फिल्म से। अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब सबरी और साथियों की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत। हम आपके हैं कौन फिल्म से लता।

0: मंगेशकर बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में रविंद्र अवाल के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। बड़ी खूबसूरती से हमने सजाया इसे सुंदर गीतों के साथ में। राजकुमार बड़जात्या के द्वारा बनाई गई फिल्मों के गीतों को हम सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनेंगे पिया का घर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

विवाह फिल्म का यह गीत उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज में रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के संगीत के साथ हम सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल में। और इसी कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं एक और बहुत खूबसूरत सा नगमा जिसे गाया है शान ने और श्रेया घोषाल ने रविंद्र जैन के बोल और उनके ही संगीत के साथ, एक विवाह ऐसा भी इस फिल्म से।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन, और आज की इबारत मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा हो क्योंकि वो फेसबुक पर ना हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर। की हमने जो इबारत आपको भेजी है वो ऐसी है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कहा कि डॉन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुराकर कहा, आपके पैर बहुत हसीन हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में तारीफ भी एक कला होती है, लेकिन मोहब्बत की दुनिया इतनी सीधी कहाँ है। कभी तो ये चाकू सी है, हाथ कट जाता है, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने अपने मिले और कितने पराए, या कहूं कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने अपने हौसले गिनकर बता देती हूं। और कभी जीवन में लोग नहीं मिलते हैं और देते हैं तारीख पे तारीख, पर हम तो हर हाल में खुश हैं। मुस्कुराकर कहते हैं कि हम जहां खड़े हो जाते हैं भीड़ लग जाती है, जीतते जाते हैं पर डर लगता है मृत्यु से। तो मन कहता है, बाबू मशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी तो रस्सी भी है। अपनों की याद में आंसू बहने नहीं देते, क्योंकि कोई ये ना कह दे कि सुनो आई हेट टीयर्स, पर जीवन की दौड़ अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर कहाँ खत्म हुई है अभी, तो ये जो पिक्चर है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं और कई लोग संदेश भेज रहे हैं, उसकी कतार बड़ी है, बड़ी लंबी सी कतार हमारे बीच में है। तो हमारे जो श्रोताओं ने बहुत सारे गाने भी आपने चुने हैं, और सच बताऊं तो कई गीत ऐसे हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से, जो हमने बनाई है आपके लिए, उससे मिल रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल हैं। अब ऐसे दृश्यों में जो कलाकार दिख रहे हैं उन पर गीत होंगे, या ये डायलॉग इबारत को पूरा करने के उद्देश्य से डाला गया है, या इन डायलॉग्स में जो शब्द हैं उनको आधार बनाकर गीतों को प्रस्तुत होगा। अब ये बात वो समझ नहीं पा रहे, उनका कहना है कि बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज कुछ नए तरीके से आपने विचार व्यक्त किए हैं। फिल्म के संवाद गीतों का सफर लगता है और साथ साथ चलेगा तो क्या होता है। देखिए, सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की, बहुत अच्छी बात लिखी है कि सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर वह तो अनुभव करना होता है। भोजन में नमक की तरह जो दिखाई नहीं देता पर होता है। कितनी बढ़िया गंभीर बात हमारे श्रोता ने लिखी है। और हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने एक बात लिखी है कि आज की इबारत केवल फिल्मी संवादों का संग्रह नहीं है, बल्कि सिनेमा के चश्मे से जीवन को देखने का एक खूबसूरत नज़रिया है। यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि जीवन की कहानी का सुखांत होना अभी बाकी है। बिल्कुल सही, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन फिल्मों के डायलॉग शामिल किए गए हैं उन्हीं फिल्मों के गाने शायद बज सकते हैं। जिक्र किया है और वो लिखते हैं कि मोहब्बत की तारीफों का अजीब असर होता है, कभी मुस्कान दे जाती है, कभी दिल भी असर होता है, कुछ जज्बात आंखों तक आकर ठहर जाते हैं और कुछ आंसू बनकर बिना बहे ही दिल में उतर जाते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, सही बात है, क्यों करते हैं पता नहीं। पर हमारे श्रोता लिखते हैं, इबारत के अनुरूप संभावित गाने हैं मैं हूं डॉन, हुडॉन, और उन्होंने कई सारे गानों के बारे में लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से क्या हो सकता है। हाँ, आपने एक बात तो बहुत अच्छी पकड़ी, हमारे एक श्रोता ने तो 15-20 गाने भेज दिए हैं चुनकर, कितनी बढ़िया बात है ना, कितनी मेहनत की होगी, उसके लिए आपको धन्यवाद है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हम जहाँ से खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आज इबारत में मुझे फिल्म डॉन फिल्म नज़र आ रही है। अच्छा, आपकी पसंद भी आपने हमको बता दी, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यह भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि हमसे हमारे इश्क का अंदाज पूछ रहे हैं और हमने भी हंसकर कह दिया, रिश्तों में तुम्हारे बाप लगते हैं। तभी पलट कर उन्होंने सादगी से कहा, थप्पड़ से डर नहीं लगता, साहब प्यार से लगता है। उस पल समझ में आया, मोहब्बत में तकरार भी एक अलग सुकून देती है, मगर इस दिल की दहलीज का कदम रखना इतना आसान नहीं है। यहाँ कभी जज्बात कांच की तरह चुभते हैं, कभी खामोशी भी जान ले लेती है। क्या खूबसूरत बातें आपने लिखी हैं। और जब इतना अच्छा लिखा है तो हम चलते हैं हमारे उसी इबारत की तरफ, और हमने सबसे पहले

0: लिखा है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कह दिया डॉन को पकड़ना, डॉन पकड़ में नहीं आता, और इससे इबारत, इसी इबारत से अगर हम समझ लें तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये गीत यहाँ पर होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। ये तो मैं मेरी पसंद से आपको एक गीत सुनवा दूंगी और हो सकता है यही मांग आपकी भी हो, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसे बहुतायत में आप प्रयोग किया करते हैं? जल्दी से मुझे संदेश भेजिएगा, ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसका उपयोग आप बहुत बार करते हैं और लोग उस बात पर, उस आपके उस अंदाज पर खुश भी हो जाते हैं। तो जल्दी से ये बात हमें बताएं, और हमारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है, एक एक अलग अलग बातें लिखी हुई हैं डायलॉग्स के बारे में लिखा है। तो चलिए हम ये गीत बढ़िया सा सुनते हैं, और अगर आपकी पसंद का है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी और हमारी पसंद मिलती है।
1: अरे तुमका का बताई भैया हमरा हाल का है।
2: बताए दे, बताए दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे कभी इधर भागे।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने मुंह ही जल गया है।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा आहा। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म होई जा।

0: छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: ये गीत जो हम सुन रहे थे वो था डॉन फिल्म से। इसके पहले भी हमने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी। ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन हम सबका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार हुआ अनजान फिल्म। अनजान के बड़े प्यारे से बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हम बात कर रहे हैं सुरीला सफ़र कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीतों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में। तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन कौन से आपको पसंद हैं या क्या आप सुनना पसंद करते हैं तो या कहना पसंद करते हैं और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है जब टेप रिकॉर्डर में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुना करते थे और दोहराते थे। और हमारे श्रोता ने हमें बड़ी अच्छी सलाह लिखी है कि आपके पाँव बहुत हसीन है, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूँ डॉन, जीवन जीने का भी बहुत हसीन बनाया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और हम सफर का साथ हमेशा बहुत मायने रखता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आई हेट टियर पुष्पा, आई हेट टियर पुष्पा, इन्हें यह लिखना था। और पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अपने फ्रेंड से मिलते थे, कुछ बात हो जाती थी तो हम बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है, और हमारी फ्रेंड हम हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स, मतलब मैं जी हम स्कूल में जो थे वो सारे डायलॉग्स बोला करते थे, मर जावा गुड़ खा के। हाँ ये डायलॉग सभी लोग बोला करते हैं ना, मर जावा गुड़ खा के, गुड़ खा के कैसे मर सकते हैं, गुड़ खा के तो खुशियाँ होती हैं, ये बात भी ये डायलॉग भी हमारे श्रोता बोला करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहाँ से चाहो तो भी वापस ना आ सको, यह संवाद दिलीप कुमार ने अमिताभ को समझा कर कहा था। ये भी बात सही है। और हमारे एक और श्रोता ने पसंदीदा डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे के होते हैं दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद हैं। अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं ये संदेश।
2: सुनिए,
3: कहिए,
4: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
5: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध का कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर। और सुरीले सफर में हम चल रहे हैं डायलॉग्स के साथ, वो डायलॉग्स जो कहीं ना कहीं आपके जेहन में, मेरे जेहन में कहीं ना कहीं बस गए हैं। और बस ऐसे गए हैं कि चाहे जब चाहे में ही निकल आते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत अच्छा सफर इसमें चल रहे हैं, और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि आज की इबारत महज शब्दों का समूह नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर और हिंदी फिल्मों के कालजयी संवादों के माध्यम से बुनी गई जीवन के प्रति एक दार्शनिक और बेबाक अभिव्यक्ति है। यह इबारत एक ऐसी शख्सियत को बयां कर रही है जो मजबूत है पर भावुक भी, निडर है पर संवेदनशील भी, और जो जीवन की हर परिस्थिति में एक सिनेमैटिक अंदाज में जीती है। यह हार ना मानने की एक खूबसूरत दास्तान रचती है। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। और हमारे श्रोता इसी बात में एक और बात लिखते हैं कि आप हमारे एक मेडिकल स्टोर की शॉप है, जब भी कोई हमारे बहुत पुराने ग्राहक शॉप पर आते हैं तो हम उन्हें शोले फिल्म का डायलॉग आओ ठाकुर ऐसा बोल देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे शब्दों से ही अगर किसी के जीवन में खुशियाँ आ जाएँ तो क्या कहना है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, कई पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। कितने आदमी थे, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, ऐसी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने बताया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, कभी कभी यह डायलॉग हम उपयोग में लाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला महलों के ख्वाब देखने, ये सारी बातें हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संवादों के लिए लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं कुछ फिल्मी संवाद को अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, जिनमें एक संवाद है, तुमने सपने देखे हैं सपनों को टूटते नहीं देखा, दूसरा है जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते, और तीसरा है मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं साला ये तो काहे को ख़त्म नहीं होता। मतलब अगर हर बार भोजन यानी खाना पकाते हुए भी LPG ख़त्म हो जाए तो भी यह डायलॉग दे ही देते हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और शायद कुछ संदेश मैं पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये जो अगला गीत है ना, इसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत में तारीफ नमक के माफिक होनी चाहिए, ज़रूरी भी है और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं। तारीफ पार्टनर को उसकी खूबसूरती अहमियत का एहसास दिलाती है। हम अक्सर अपनी खूबियों को नहीं देख पाते पर जब कोई चाहने वाला तारीफ करता है तो हम उसकी नज़र से देखने लग जाते हैं, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बन जाती है। सच्ची तारीफ भरोसा और अपनेपन भरोसा और अपनेपन को गहरा करती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आंखों की और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आंखों को और स्त्री पुरुष के मन को पढ़ने की कोशिश करे, ये पढ़ ले तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहताज नहीं रह सकती बल्कि मोहब्बत की ही तारीफ हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि आपके पैर बहुत हसीन हैं। ये राजकुमार जी का ज़रा बताइएगा। आपके पैर बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिए मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग पाकीज़ा फिल्म का है और उसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिलान हो रहा हो। बताइएगा अगर आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो ज़रूर हमें सूचना दीजिएगा, और इतना सब बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है, और साथ में ये बताइएगा जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है, और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने, किसी शिक्षक ने, कभी माँ ने आपको ऐसे ही अनजाने में सुना दिया हो और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हो जहां पर आपकी पिटाई हो रही थी या डांट पड़ रही थी, जरूर बताइएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा, बताइएगा इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं से कहाँ क्या छुपाए, बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया कि कैफ़ी आज़मी ने इस गीत को बोल दिए हैं। और गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इन्हीं हेडफोन्स के जरिए विविध भारती के स्टूडियो से, आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर। और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं, शबे आखिरी शबे इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलती जलती। क्या बढ़िया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारी श्रोता लिखती हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या डांट खाते खाते हंसने लगते हैं। तो हमारी श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ डॉन को ना कभी दर्द नहीं होता, तो मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और वो और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती हैं और बहुत सारा प्यार भी करती हैं, इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के इस सुरीले सफर में डायलॉग की बात हो रही है, तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे हैं, चल तनु बसंती आज चल धनो, यहाँ तनु नहीं यहाँ धनो होना चाहिए, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, तुम्हारा क्या नाम है बसंती, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, मेरे पास गाड़ी है बंगला है पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, आओ महारथी आओ। ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफ़र के साथ, सफ़र यानी डबल सफ़र करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफ़र के साथ साथ ट्रेन के सफ़र का भी आनंद ले रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ, ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा, तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे सारे डायलॉग्स ही पहचान करके लिख दिए, और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है, उनसे मेरा यही कहना है, मैं विविध भारती सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात को प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोधड़ी सिल के भेजनी है तो गाने सुनेंगी, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सबकी शिकायत पापा से करती थी, तो हमारे पिताजी पूछते थे कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है यह सोचकर। हाँ, लेकिन उस समय तो हम सबकी हालत पिटाई और डांट के डर से देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए, और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है, और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम। सुनिए।

हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्ण मूर्ति और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानी ये चाकू है, लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी। और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं, चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का स्माइक असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफ़र चल रहा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, जब तुम कहोगे, ये डायलॉग इनके बीच में चलता था। और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है, और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे माम हो गए, वो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे ये डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, ये कई लोग ट्राई करते हैं इस डायलॉग को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ बाबू जी कहाँ जाओगे, बेलापुर फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे हैं उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई उसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखती हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड वाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, ज़रूर भेजिएगा, और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे।

हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की ये फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए, हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का सुरीला सफर में जुड़कर मोगैम्बो खुश हुआ क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे, तो जरूर भेजिएगा। मौसी जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं क्या? आप सही बात है, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है। प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है, एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, यूं तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनों की इज्जत का सवाल है, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं ही। और हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, ठाकुर हमका ये हाथ दे दे, क्या था सही डायलॉग आप ज़रा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गीत के साथ बोला आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है, कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो धोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बरातियों के लिए रख छोड़ा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा 8 ईयर्स मोगैम्बो खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया, मेरा नाम सुरमा भूपाली ऐसे ही नहीं है। अरे वो सांभा, कितने आदमी थे ये, हमारे श्रोता लिखते हैं।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब, गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है, और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंतीन के सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है, कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी कितने आदमी थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं। और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा है और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने ज़माने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी, हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है, जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मज़ा आता है। तो कालिया कहता है कि दो हैं कहाँ रे फौजी नंबर दो, ये कई सारे डायलॉग जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं, बस यही करना है कि उस गीत के गायक को पहचान लेना है और ज़रा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है। डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से, तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छा

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से, तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, और इसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं और खाली आ कितने आदमी थे ये डायलॉग भी हमारे श्रोता ने दिया है। और इसके साथ में आपको अलग अलग गीतों की कई सारी बातें बनाऊंगी, तो एक डायलॉग मैंने लिया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उसके वह गीत है इस फिल्म ओम शांति ओम से। और उसके साथ ही हम एक और बड़ा प्यारा सा

0: हैं।
1: आंखों में अदाएं भी हैं और एक और बात आ जाती है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये डायलॉग भी इस फिल्म का है जो कि है फिल्म कालिया। तो सुनते हैं ये थोड़ा सा नगमा।

और अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाह ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी, ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है, हर रोज़ मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज़ वो जो गीत रह गए हैं उन्हें पूरा सुनाऊंगी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो बहनों, अभी आप सुन रहे थे हेलो बिंदिया और राष्ट्रीय सेवा
2: देश की सुरीली धड़कन में कार्यक्रम सुरीला सफर में। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ।

0: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की प्रस्तुति दीदी के गोट सुनने वाले सभी महतारी दीदी भैया और श्रोता संगवारियों को चंदा
1: और सूरज के तरफ ले
0: जय बिहान।
1: ये काय करस चंदा,
2: क्या हुआ दीदी?
1: ओहो, व्हाट्सएप या दिगर माध्यम ले आए कोनो भी ऐप ला इंस्टॉल नहीं करना चाहिए।
2: नहीं भूली हूँ दीदी, ठग नई नई तकनीकों का उपयोग करके लोगों को धोखा दे रहे हैं।
1: हाँ?
2: और खासकर महिलाओं को और स्व सहायता समूहों की दीदियों को निशाना बना रहे हैं।
1: हो काकीला फोन आ रही है गोई।
2: हाँ?
1: हाँ? वो फोन कर रही है खुद ला बैंक अधिकारी बताइस।
2: अच्छा?
1: वो बता के भरोसा जीते को कोशिश करत रही।
2: इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें सामाजिक और डिजिटल रूप से भी जागरूक किया जा रहा है।
1: तो दीदी हो, आज हमारे दीदी के गोट कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा के बारे में विस्तार ले जानकारी दे बर पधारे हमें श्री कवि गुप्ता जी, AIG टेक्निकल सर्विस छत्तीसगढ़ शासन।
2: जय बिहान सर जी, आपका स्वागत है।
3: सभी दीदियों को जय विहान।
2: सर, जैसे आज हम लोग साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम जो है वो किस प्रकार के होते हैं?
3: देखिए दीदी, वैसे तो साइबर अपराध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब हम रिपोर्ट

0: करते हैं या शिकायत दर्ज करते हैं तो इस दृष्टि से इसे तीन प्रकार से समझा जा सकता है।
1: जी।
0: पहले श्रेणी में जो भी साइबर अपराध महिला एवं बच्चों के साथ होते हैं वो साइबर क्राइम आते हैं। दूसरा ऐसे मामले जहां पे पैसे का नुकसान हुआ है या फिर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी जिसे बोला जाता है।
1: जी।
0: और तीसरा अन्य सभी प्रकार के साइबर क्राइम इस श्रेणी में रखे जाते हैं। चूंकि ऑनलाइन जगत में महिलाएं एवं बच्चों को काफी संवेदनशील माना गया है इसीलिए इनसे संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं इसे विशेष कैटेगरी में रखा गया है।
1: अच्छा।
0: इसमें महिला एवं बच्चे संबंधित कोई अश्लील सामग्री का प्रसारण या ऑनलाइन उत्पीड़न संबंधित मामले दर्ज किए जाते हैं। इसी तरीके से वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में ऐसे मामले आते हैं जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन ठगी के उपरांत पैसे का नुकसान हुआ हो।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा बाकी अन्य जितने भी प्रकार के साइबर क्राइम हैं जैसे हैकिंग है या सोशल मीडिया संबंधित साइबर क्राइम है इसे अन्य साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा गया है। ये तीनों प्रकार के साइबर अपराध की शिकायत आप साइबर क्राइम पोर्टल यानी cybercrime cybercrime.gov.in यहाँ पे इस पोर्टल में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
1: जी सर, आपने एक प्रकार बताया कि वित्तीय अपराध, तो वर्तमान में किस प्रकार के ऑनलाइन वित्तीय अपराध हो रहे हैं?
0: दीदी देखिए, ऐसे तो ये जो वित्तीय अपराध है इसके तरीके लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जिस प्रकार के वित्तीय अपराध चल रहे हैं इनके बारे में थोड़ा हम जानकारी साझा करें।
1: जरूर।
0: इसमें किसी व्यक्ति के जान पहचान या रिश्तेदार बनकर या सरकारी किसी योजना का लाभ देने के नाम पे किसी व्यक्ति को कोई एपीके फाइल, ओटीपी या लिंक भेज करके भी ठगी की जा रही है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को निवेश में ज़्यादा पैसे का लालच देकर या ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन नौकरी या शॉपिंग के नाम पर भी ठगी काफी की जा रही है।
2: जी, तो सर जी, आजकल वित्तीय धोखाधड़ी का मामला तो बहुत बड़ा था वह, तो का हमन ला ऑनलाइन बैंकिंग, UPI या फोन पे जैसे डिजिटल माध्यमन के उपयोग बंद कर देना चाहिए का?
0: देखिए सुरु दीदी, ये सही है कि ऑनलाइन ठगी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है।
1: जी।
0: लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें डर कर ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग नहीं करना चाहिए। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि अज्ञानता, लालच, डर और लापरवाही ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऑनलाइन जगत में यदि कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाए तो हम कभी भी किसी प्रकार के ऑनलाइन ठगी के शिकार नहीं होंगे और डिजिटल बैंकिंग आसानी से कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे OTP पिन कभी शेयर ना करें, किसी भी अनावश्यक लिंक पर क्लिक नहीं करें।
1: अच्छा।
0: फोन पर कोई भी अनजान ऐप इंस्टॉल ना करें, फोन पर किसी भी अनजान व्यक्ति पे विश्वास नहीं करें। याद रखें कि ऑनलाइन दुनिया में पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट उपलब्ध नहीं है, अतः इस प्रकार के किसी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह फोन के माध्यम से यदि कोई आपको अनावश्यक डराकर या धमका कर पैसा मांगता है तो ऐसे व्यक्तियों के बातों में बिल्कुल ना आए। अपना मोबाइल हमेशा अपडेट रखें और शासन द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागरूकता कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर अपनी जानकारी हमेशा अपडेट रखें। इन बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी कोई साइबर अपराध के शिकार नहीं बनेंगे।
1: तो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, उनसे बचने के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: देखिए दीदी, ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं उनसे आजकल देखा गया है कि शासकीय योजनाओं का लाभ देकर ठगी की जा रही है। शासन के विभिन्न योजना जैसे जननी सुरक्षा योजना, महतारी वंदन योजना, सिलाई मशीन योजना या शिशु के जन्म में सरकार द्वारा सहायता दी जाती है उसका लाभ देने के नाम पर भी ठगी की जा रही है। ऑनलाइन जगत में अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करना व निजी जानकारी साझा करना खतरनाक हो सकता है, अतः मैं सभी दीदियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना निजी कोई भी जानकारी, फोटो या वीडियो ऑनलाइन जगत में साझा करने से बचे।
2: सर जी, कहूं कोनो संग साइबर अपराध हो जाते तो उला का उपाय करना चाहिए तेन बताते हो?
0: दीदी, सबसे जरूरी बात है यदि किसी व्यक्ति के साथ, किसी भी दीदी के साथ कोई भी धोखाधड़ी या साइबर अपराध हुआ है तो तुरंत एक नंबर है 1930। सभी दीदियों से अनुरोध है कि ये नंबर ला नोट कर लें, 1930। ये सरकार द्वारा चलाया गया एक हेल्पलाइन नंबर है, इसमें डायल करके अपना शिकायत दर्ज करें।
1: अच्छा।
0: या तो फिर इसके अलावा

0: अब दूसरा विकल्प है नजदीकी साइबर पुलिस थाना चले जाएं या फिर साइबर क्राइम पोर्टल में भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं दीदी कि ठगी के बाद अगर तुम्हारे साथ कोई वित्तीय धोखाधड़ी के केस हुई से तो ठगी के बाद यदि तुरंत बिना समय गवाए अगर अपन रिपोर्ट लाते दर्ज करवे तो पैसा मिले की संभावना प्रबल हो जाते है। इसीलिए बिना समय गवाए अपना रिपोर्ट अपनी शिकायत 1930 नजदीकी थाना या साइबर क्राइम पोर्टल में दर्ज कराएं। यदि आपको कोई भी आपका निजी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता है तो ऐसी शिकायतों को खास तौर पे साइबर क्राइम पोर्टल में महिला एवं बच्चे संबंधित शिकायत की का सेक्शन है, वहाँ पे अपनी शिकायत को दर्ज करें। शिकायत दर्ज करने के लिए दो विकल्प है, आप नामजद अपना नाम दे करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या नाम बताए बिना भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसी शिकायतों पे जब पुलिस कार्रवाई करती है तो महिला की गोपनीयता एवं सुरक्षा का पूरा ख्याल रखती है।
1: सर आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी है, अपने मोबाइल के माध्यम से आप 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल इसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सर वित्तीय धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, लिंक के माध्यम से ठगी, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग, ऐसे अपराधों से बचने के लिए जो डिजिटल जानकारियां, सावधानियां और कानून के संबंध में आपने विस्तार से जानकारियां प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुने ना दीदी हो, सतर्कता और सही जानकारी ले साइबर अपराध ले बचे जा सकते। तो दीदी हो, सजग रहो और जागरूक रहो।

0: वर्तमान में समूह की महिलाएं आजीविका संवर्धन हेतु विविध गतिविधियां संचालित कर लखपति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसित हो रही हैं। ऐसे में दीदियों द्वारा वित्तीय सहायता और लेन देन अधिकतर ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है।
1: सही कहे चंदा, आज डिजिटल जमाना में मोबाइल और इंटरनेट ले बैंकिंग, पैसा के लेन देन और सरकारी योजना मन के फायदा सरलता ले मिल जाते। अब गवई गाँव मन में घलो माई लॉगिन मन और स्व सहायता समूह के सदस्य मन मोबाइल के माध्यम ले बैंकिंग सेवा के उपयोग करत हवें।
0: ऐसे में डिजिटल रूप से सशक्त और सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता के साथ साइबर सुरक्षा जरूरी हो जाती है। तो आइए हमारी जागरूक बीसी सखी दीदी श्रीमती गुलची सिदार जय माँ अम्बे स्व सहायता समूह ग्राम अमलडीहा जिला शक्ति से मिलते हैं।
2: जय बिहान दीदी।
3: जय बिहान दीदी।
1: दीदी आप अपन बारे में बताते हो।
3: मैं 2019 में समूह से जुड़े ओकर बाद मोला बीसी सखी के रूप में चयन किया गिस। मोला बैंकिंग समावेशी के ट्रेनिंग दिया गिस जिन में मैं एक सप्ताह आरसीटी में ट्रेनिंग लेके आईआईबीएफ के एग्जाम फाइट करें और उसमें उत्तीर्ण रहे। आज वही सर्टिफिकेट के माध्यम से मैं भारतीय स्टेट बैंक के कियोस्क शाखा ले हूँ और साथ में मोर सीएससी सेंटर भी है जिन में मैं ई डिस्ट्रिक्ट भी चलाता हूँ और आईआरसीटी रेलवे टिकट बुकिंग ऑनलाइन के सारा काम मैं कर लेता हूँ।
0: तो दीदी जैसे बैंकिंग जिन फ्रॉड होते ओखर ले बचे बर आप मन हमर दीदी मन ला कैसे सिखाते हो?
3: के लिए बैंकिंग साक्षरता अभियान चलाया जाता है जिसमें हम लोग कैंप लगाते हैं गांव में और दीदियों को बताते हैं अनजान व्यक्ति कोई ओटीपी मांगता है तो बिल्कुल भी मत बताइए। यदि आप ओटीपी बता भी देते हैं तो तुरंत तो आप अपने लिंक शाखा में जाइए, अपने खाते का जो लेन देन है वो तुरंत निष्क्रिय कर दीजिए।
0: अच्छा।
3: और जैसे मोबाइल बैंकिंग चलाते हैं हम लोग, इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं तो उसका पिन कोड चेंज कर लीजिए या तो बैंकिंग ऐप से है उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए। कई लोगों को कॉल आता है कि आपको लोन दिया जाएगा जिसके लिए आपको 1500 रुपया आपको हमें देना पड़ेगा करके, जो बैंक आरबीआई के पास पंजीकृत है आप उन्हीं से लीजिए।
0: दीदी दीदी के गोठ में हमारी दीदियां हमसे प्रश्न पूछती हैं टोल फ्री नंबर पर फोन करके। ये जो प्रश्न है ये है पलारी कला की पुष्पा साहू जी का। इन्होंने सवाल पूछा है कि महतारी वंदन का पैसा मिलता है जिसके लिए महिलाओं के मोबाइल पर ओटीपी आता है, कभी कभी फ्रॉड ओटीपी भी आता है, कभी एपीके फाइल्स आती हैं, तो इनमें से सही और गलत की पहचान कैसे करें और ऐसे फ्रॉड से कैसे

0: बचा जा सकता है।
1: महतारी वंदन का जो पैसा है उसके लिए कोई ओटीपी नहीं आता किसी भी प्रकार से।
0: अच्छा।
1: महतारी वंदन का पैसा सीधा आपके खाते में डाल दिया जाता है और यदि किसी प्रकार का मैसेज आए तो आपके बैंक से मैसेज आता है कि आपके खाते में 1000 रुपए जमा कर दिया है करके। और जैसे एपीके आप टच कर लेते हैं तो उसके लिए ये है कि आप तुरंत अपने साइबर सेल को शिकायत करें 1930 पर कॉल करके बताएं और 1 घंटा के लिए तो फिलहाल मोबाइल बंद ही कर दीजिए। और पब्लिक प्लेस में जो वाईफाई होता है जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, कैफे में हो गया, उसका वाईफाई कनेक्ट करके आप कभी भी बैंकिंग लेन देन ना करें।
0: दीदी आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी, जागरूक किया, हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुना था चंदा?
0: हाँ दीदी।
2: छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के माध्यम ले स्व सहायता समूह के दीदी मन आर्थिक रूप से सशक्त बनत दीदी मन डिजिटल रूप ले भी जागरूक हवें।
0: स्व सहायता समूह की दीदियों के स्वरोजगार को बैंकिंग, ऑनलाइन लेन देन और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से नया आयाम मिला है।
2: हो
0: जानती हो ऐसे में वे कैसे साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ रही है?
2: कैसे
0: आइए जानते हैं। आप है ग्राम कंडोरा धनी टोला जिला जशपुर से श्रीमती सुमन एक्का।
3: जय बिहान दीदी।
4: जय बिहान दीदी।
2: दीदी आप अपन बारे में बताते हो।
4: मैं सक्रिय महिला का काम 2019 से करती थी। बिहान से जुड़कर FLCRP का प्रशिक्षण लेकर ग्राम संगठन मीटिंग होते हैं, मैं उसमें जाती हूँ और दीदियों को बैठा कर मैं वित्तीय साक्षरता के बारे में बताती हूँ, कैंप लगाते हैं।
0: दीदी बैंकिंग जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके बारे में कैसे जानकारी देती हैं?
4: उदाहरण को लेके मैं लोगों को बताती हूँ। मेरे से भी खुद ऐसी हो गया है, मेरे हस्बैंड से ही। उनको ये फ्रॉड कॉल आए थे, मैं बैंक से बोल रहा हूँ आपके KYC अपडेट नहीं है इसीलिए मैं आपको एक OTP भेज रहा हूँ, OTP को आप बताना करके बोले। तो मेरे हस्बैंड को लगे कि सही में बैंक वाले हैं, फिर वो अपने डिटेल रूप से बताना स्टार्ट कर दिए। फिर OTP आया, उन लोग वो दो बार बता दिए OTP को, फिर उनका पैसा 9,700 रुपया ले गए। साइबर क्राइम के बारे में मेरी दीदी का ही उदाहरण दे दे कि मैं अपने गांव में जब जाती हूं तो उनको बताती हूं। मेरे परिवार में ही ऐसे कॉल आ गया था, मेरे दीदी के बेटे को गिरफ्तार कर लिए हैं ऐसा करके, तो मैं उस समय भी मैं सामने ही खड़ी थी तो मेरे को जानकारी था। मैं इसके बारे में बार बार ट्रेनिंग ले चुकी थी तो मैं अपनी दीदी को मैं मना करी कि ये फ्रॉड ये साइबर क्राइम वाले हैं, आप इनसे बचिए, यही जागरूक करती हूँ।
2: दीदी जागरूकता अभियान के बारे में बताया, एक खातिर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
0: रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ हर एक महीने के दूसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से और बस्तरिया और सरगुजिया कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 2:30 पर सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम में योजना से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 में दोपहर 12 से 3 बजे फोन करके पूछे जा सकते हैं।
2: तो सुरता रखो दीदी हो, OTP और पासवर्ड कोनोला नहीं बताना है।
0: किसी भी अननोन सोर्स से कोई भी ऐप इंस्टॉल करने का विकल्प बंद रखें और किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर तुरंत विश्वास न करें। पहले उसे वेरीफाई करें। व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से आए किसी भी ऐप को इंस्टॉल न करें। रोजाना अपने ट्रांजेक्शन की जांच करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें।
2: जागरूकता और सुरक्षा के संग तरक्की की ये यात्रा बढ़त रहे, यही कामना संग बिहान के अवैया कार्यक्रम में दीदी मन के सफलता के नवा कहानी लेके फिर मिलवो। तब तक बर देव विदा। जय जोहार। जय बिहार।
5: से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता VD सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ.S. जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स

0: देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: Our discussions must advance.
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
3: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग $3 अरब के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
4: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम

0: विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जाँच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था।

0: वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी नेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत 12 o'clock फिल्म से मोहम्मद रफ़ी गीता दत्त की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला गीत डिटेक्टिव फिल्म से, गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत आखिरी दांव फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, जो कि है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

हम सुन रहे थे मधुमति फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मालिक फिल्म से सुरैया शमशाद बेगम और साथियों की।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल, आपको और साथ में हमारी सारी सखियों, सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
1: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार

0: क्या उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है तो आज भी वजह बताइए
1: भाई, एक बार जब भी आते हैं ना तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना,
0: हाँ।
1: सेहत का ख्याल है या नहीं।
0: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी।
1: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
0: हाँ तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: वो हमसे साझा कर सकती हैं, लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
1: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है ना।
0: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े या
1: जी
0: उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो
1: वो
0: उपयोगी टिप्स
1: बताएंगे।
0: लगकर बता
1: जी
0: देंगे।
1: बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
0: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
1: देखो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जा करके देखते हैं कितना किस्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं। तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें,
0: देखो
1: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला, हाँ साधारण नहीं।
0: क्या होता है ना, आसानी से वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किश्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज 15,000 20,000 50,000 तक की भी हो सकती है उसे हम कुछ 2-4 हज़ार 5-8 हज़ार देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं।
1: बिल्कुल। तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या
0: जी
1: कोई और चीज के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी हैं, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
0: और
1: क्या
0: इसके
1: अनुभव
0: साथ
1: है।
0: जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि
1: हाँ
0: उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना, देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है
0: हाँ
1: जो
0: हाँ
1: जहाँ पर हम KG 1 KG 2 के जब पढ़ते थे
0: हाँ
1: बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती, तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है, तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में
0: जी
1: या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
0: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते हैं।
1: अरे
0: कुछ
1: बिल्कुल।
0: ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं, कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है।
1: जी
0: वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं,
1: हाँ
0: बस अपने शौक
1: हाँ
0: में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफर अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है, बहुत कुछ जानकारी तो
0: भाई
1: है उसके
0: जानकारी
1: बारे
0: बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
1: में। अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: बहुत सुंदर गीत था, और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसी ही कुछ खनक रंगों में होती है, और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं, जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना, जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफ़र हमें यही बताता है चंचल, कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी, खास तौर
0: जी
1: पर वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है, जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें, और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन
1: बिल्कुल।
0: चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है,
0: जी
1: और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या
0: जी
1: 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास सीखूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ। तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा,
0: जी
1: ज़रूर अपने पास की किसी कोई क्लास, कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा ज़रूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है। उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि
1: जी
0: बच्चे पढ़ लिखकर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा।
0: आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है, तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक

0: को पूरी तरह से जी लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरीबाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गांव है पिटौर, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी कभी घोड़ा और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी, अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, तो पड़ोस के ही गांव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आसपास के गांव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरीबाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी, और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरीबाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया, तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
0: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
1: जी, उनके पति चले आए, हाँ, पति के साथ,
0: पति के साथ वो चली आई। और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया, और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहाँ के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
1: ये उनको कहा, तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया, जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहां जी
0: भाई, उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई, और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और त्यौहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी, जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है, तो वो उनका अंदाज था।
1: भूरीबाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी, जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें साल हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
0: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
1: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है, और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी, जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
0: और भूरीबाई का ये मानना है कि आप चाहे गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को।

0: और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए। आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अभी गाना सुन ले।
1: चलिए।

0: पानी पता है कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है।
1: बिल्कुल
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सूनी होती। भाई, सखी सहेली के रहते
0: जी।
1: आपकी दोपहर कभी सूनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर, या तो हम कहें सभी रिश्ते, जन्म से संबंधित होते हैं।
1: जी
0: और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा।
0: जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही।
0: मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ
0: हाँ,
1: करती थी।
0: दिल से जुड़ जाते
1: और
0: थे।
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं
1: बिल्कुल
0: होती।
1: सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण, सुदामा और कर्ण, दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
0: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
1: चलिए,
2: कहानी बाकी रह गए, दोस्ती यारी रद्द हो गई है। प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है। छी छी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान, जब दोस्ती होती है तो

0: होगा, हम पांडव हैं भारत के, जो कहते वो ही होगा।
1: ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा, हम पांडव हैं भारत के, जो कहते वही होगा।
2: ओए जम के एक जमा दूं

का जब तक जोड़ सलामत साथ सलामत छोटी और बड़ी है तो क्या पांचों है तो हाथ सलामत एक एक के है पांच मुकद्दर तकलीफों से घबराना मत साझे जोड़ जवानी बचपन पांच से पांच

बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती में सिर्फ दोस्ती ही होती है, कोई एहसान नहीं होता। लेकिन इस वक्त समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की।
1: दोस्ती की
0: देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं
0: जी।
1: वो तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं, हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब, सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास।

0: और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते, है
1: सही बात है, बिल्कुल
0: ना?
1: सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे, ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं, सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भाई बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है,
1: वर्षगांठ
0: तो
1: है।
0: आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा।
0: अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में ढांढस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है, और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरापन सुनन सुना गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं, तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते
1: मिल ही
0: हैं।
1: सकते हैं। और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथ ही रहा है। एक समय था, एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूलते थे, नहीं भूल पाते थे। पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखी और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी
0: जी
1: डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं, आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल। अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे, तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो भाई चलिए सुनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते
1: क्या
0: हैं।
1: बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है। क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना इनकी कितना आसान ईएमआईज पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है। अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीज़ें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं। कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीज़ों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है जिसे

0: एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर लेना है। अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है, इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए। और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं,
1: जी
0: तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है, तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे। लेकिन
1: बिल्कुल
0: उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
1: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई ज़रूरी चीज़ है, जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है, अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए, एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
0: मैंने फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है, तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना, तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना। अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए, तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है। और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज़ हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके पीछे
1: बिल्कुल
0: जो
1: सही
0: हमें
1: कहा।
0: जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, उन चीज़ों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है, उतनी आमदनी आपको
1: आमदनी
0: रखनी,
1: होनी
0: या
1: चाहिए
0: तो फिर किश्तों से ही बचना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है, अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की तो
0: जी
1: किस्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या
0: हाँ
1: कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना,
0: जी
1: जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या
0: हाँ
1: इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हज़ार की नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हज़ार तक भी चली
0: और वो
1: जाती है।
0: जो 20,000 की चीज़ आपको खरीदनी थी, वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30,000 या 35,000 तक की वो पड़ जाए।
1: हाँ बिल्कुल
0: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते हैं ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथ ही लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है, चूंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने EMI दे सकते हैं, तो वही चीजें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की उसमें महंगी पड़ जाती है, और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं, और पैसा भी डूब
1: बिल्कुल
0: जाता है।
1: बिल्कुल ये सही कहा। देखिए इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या हैं, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान हैं, जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी
0: जी
1: हो सकती है, GST कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किस्त तो हमें जानी ही है, फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे EMI चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार, कि किस्त
0: जी
1: बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
0: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
1: अच्छा एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप EMI के पक्ष में हैं तो 10% का नियम अपनाना चाहिए, वो क्या है कि आप सभी EMI का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है इनकम आपकी उसका 10% ही सिर्फ EMI में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम

0: गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा
0: चलिए
1: दें?
0: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं गर्मी बहुत है,
1: सही
0: और
1: बात है,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहाँ उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है। आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं। और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है, हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में

0: रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
1: जी
0: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते
1: तो
0: हैं।
1: उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि

0: इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज़्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफ़ी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने। इस
1: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी हैं कि लिनन या सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे। नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते इसलिए बदबू बढ़ाते हैं। और एक बार कपड़े, जैसे अभी आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना
0: जी
1: पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई हैं कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
0: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफ़ेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें। सफ़ेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहाँ जो प्रभावी हिस्सा है, जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आती है पसीने में, वहाँ रगड़ कर धो लेना है। टमाटर है, इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं, उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबाल कर, नींबू का रस निचोड़ कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचल कर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको
0: जी
1: पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप अब नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
0: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
1: चलिए

0: की सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओ नमस्कार, आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुने यादों का कारवां ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला, लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ही है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी, तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है, तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा तो ये भी बता दें।
1: कि मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: पूर्व लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूँ, मैं राइटर हूँ, लिखता हूँ।
0: क्या बात है।
1: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
0: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त लिखते हैं।
0: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दो मिनट का मौन है। आओ मित्र, दो मिनट का मौन रखें। आओ मित्र,

0: दो मिनट का मौन रखें, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें।
1: क्या बात है, क्या बात है भैया आपकी, तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं, और बहुत खूब आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए।
0: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
1: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
0: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है, सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास।

0: आए हैं वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई, खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैं मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो चिलमन है दुश्मन

0: हेलो फरमाइश
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मरिया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हाल चाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ तो बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो
0: अच्छा।
1: कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे
1: तो
0: ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश छाया गीत और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर में बहुत ही अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा
1: मेरा माँ है पापा है तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, को थोड़ा सा देखभाल करती है तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात तो मंदिर है माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा
1: तो यह से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी का आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या 12 महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा ये बताएं कि आज आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी जी मेरे को गाना सुना दीजिए, सजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है बंगाली भाषा
0: जी,
1: तो बंगाली लोग रहती है तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है हिंदी भाषा सीख जाती है
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी बहन जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ। बहन जी
0: बताएं जरा अपने
1: बस
0: बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूलों वाला काम, डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में
1: जी
0: आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जाते हैं। अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जात?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हाल चाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास में, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: अरे

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो विद भारती का सुनने वाला हूँ। मैं घाट कोपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट कोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो कि बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ। ऐसे ही जुड़े रहें और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, फेमस है उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी रहे। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी वो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं। अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जवर आल अलिफ जवर आल अलिफ जवर ए अलिफ पे सो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल हैं?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम, कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी?
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत।
0: जी जी जी जी
1: बिल्कुल। आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहाँ का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है।
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा
1: मुझे बहुत
0: क्यों?
1: खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा
0: हाँ
1: होता है कि आपको मतलब सारी खुशियां मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप से आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप से। और अगर हम कहीं बाहर भी जाएं ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है, पहले सेहतनामा आता था, अभी सेलुलॉइड के सितारे शुरू किए हैं, और इससे इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड हैं।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं, खेत से कर रहे हैं क्या?
1: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना, तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं। खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा तो जरा ये बताएं कि आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है अर्पण और गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है।
0: जी गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मतराज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी, आपका पुराना श्रोता।
0: हिम्मत भाई नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हालचाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली, तो वो छुट्टी जो है हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में।
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शिपाल दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है
1: अमरावती विदर्भ में? बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है दीदी, 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: उड़ी जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब के आज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते। आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग वैसा ही है, मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: जमा कोट वगैरह। अभी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों, लेडीज जेंट्स?
1: जेंट्स।
0: अच्छा,
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है तो कामकाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका? आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता होगा, तो उसके लिए कारीगर ज्यादा लगाने पड़ते होंगे।
1: कारीगर तो ज्यादा ही है मैडम, मालिक की कृपा से, और उनको टाइम पे भी मिल जाते हैं कपड़े।
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है।
1: इस बार थोड़ी सी शादियां कम है।
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से थोड़ा फर्क है।
0: अच्छा,
1: पर्यटकों की तो भारी धूम मची हुई है स्थान के अंदर।
0: हम इसी पॉइंट पर आने वाले थे, वही बात आपने छेड़ दी कि भाई उदयपुर और राजस्थान में पर्यटकों के क्या हालचाल हैं, भाई इतनी गर्मी में भी पर्यटक हैं या नहीं है?
1: जी बिल्कुल है मैडम, 12 ही महीने उदयपुर के अंदर पर्यटक मिलेंगे ही मिलेंगे।
0: जी जी जी,
1: चाहे गर्मी कितनी भी हो।
0: तो ये बताएं कि उदयपुर में और चीजें ऐसी क्या हैं जो देखी जा सकती हैं झीलों के अलावा?
1: झीलों के अलावा तो एक मानसून पैलेस है, और वो भी अच्छा है। थोड़ा सा ही आगे कुंभलगढ़ है, और 40-45 किलोमीटर की दूरी पर नासिक द्वारा सिद्धनाथ जी का बहुत ही शानदार मंदिर है।
0: जी जी,
1: उसके बीच में एकलिंगपुरा जी का, एकलिंगपुर मतलब एकलिंगगढ़ के नाम से महादेव जी का मंदिर है, और अभी पिछले 3-4 वर्षों में नया एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उदयपुर में ही हमारे सिंधी समाज के द्वारा ही बनाया गया है, निर्मित किया गया है।
0: अच्छा,
1: सेम टू सेम जैसा वैष्णो देवी में बना हुआ है। ज्योत भी वही वैष्णो देवी माता जी से ही आई थी, और लंगर 12 ही महीने चालू रहता है।
0: अच्छा, अब ये बताएं कि हमें इंतजार है इस बात का कि आप बताएं अपने पसंद का फिल्मी गाना आज के कार्यक्रम के लिए।
1: एक रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, हवस मूवी से, तेरी

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली बहन को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और
1: आज हमारे मन में इच्छा थी कि शेफाली बहन से बात करेंगे, तो आज पूरी हो गई।
0: क्या बात है, तो हम जाने कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं आपका बड़ा भाई उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, जरा हालचाल तो बताएं अपने।
1: हालचाल हमारा मस्त है, गर्मी 44 डिग्री चल रही है और राजस्थान में गर्मी बहुत ही होती है।
0: जी राजस्थान की गर्मी तो फेमस है। उदय भाई वहाँ पर क्या काम काज है?
1: हमारा टेलरिंग का काम है, जेंट्स कपड़ों की सिलाई करते हैं।
0: क्या बात है भाई।
1: मैं 55 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और अभी मेरी उम्र है 74 साल।
0: क्या बात है, 55 साल से आप विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी
0: आपने इन 55 सालों में बहुत बदलाव देखे हैं विविध भारती में।
1: मैंने सबसे पहले तो वाल वाले रेडियो सुने थे, उसके बाद में चार चार सेल वाले ट्रांजिस्टर आए थे, फिर दो सेल वाले आए थे
0: जी,
1: और अभी तो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं।
0: सबसे
1: बहुत परिवर्तन हुआ है।
0: अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ सुनने में, कैसे सुनने में आया? मोबाइल पर अब आप ज्यादा अपने को सहज महसूस कर पाते हैं या पहले जमाने में जैसे आप सुनते थे उसमें अपने को सहज महसूस करते थे?
1: नहीं, रेडियो पर जो आनंद आता था वो मोबाइल में नहीं आता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही कही है।
1: समय होता उसके 5 मिनट पहले से हम वो ट्यून लगाते कोशिश करते।
0: सही कह रहे हैं,
1: ट्यून बड़ी अच्छी लगती थी।
0: जी जी जी, तो अभी भी रेडियो अपने पास

0: रखा है या नहीं रखा है?
1: नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आज बंद है।
0: हाँ, तो ये पुरानी यादें हैं जो हमेशा साथ रहती हैं।
1: जी जी।
0: तो अब ये बताएं, दिल खुश करने वाला वो कौन सा गाना है जो आपने हेलो फरमाइश के लिए आज पसंद किया है?
1: फिल्म वो कौन थी का काल जी गाना है, लता जी की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान साहब के शब्द है
0: जी,
1: और मदन मोहन जी की मधुर धुन है
0: जी,
1: लग जा गले
0: जी,
1: हसी रात फिर हो न हो।
0: काल जयी गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं। अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और

0: की मधुर धुन है
1: जी,
0: लग जा गले
1: जी,
0: हसी रात फिर हो ना हो,
1: कालजयी गाना है, इसकी तो कोई बराबरी ही नहीं, अद्भुत गायकी, अद्भुत संगीत और कमाल के बोल हैं इसके। अब सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी बातचीत और आपकी फरमाइशें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हम सिर्फ गाने नहीं सुन रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं। साथियों, जिंदगी चाहे जितनी तेज क्यों न हो जाए, एक अच्छा गीत हमें हमेशा कुछ पल ठहरना सिखा देता है। बहरहाल, आपको बता दें कि फोन पर हमारी अगली मुलाकात होगी अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे से विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से हम रिकॉर्ड करेंगे फोन पर आपसे की गई बातचीत। तो हमारे टेलीफोन नंबर्स फटाफट नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 400-24662, नंबर एक बार फिर से 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022022। चलिए अब हमारा दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 2867-0288 2867-0288। और हाँ, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, वे कृपया 2 माह के बाद ही हमें कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी उनके इस पसंदीदा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। चलते चलते आपको ये भी बता दें, आज के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। साथियों, रिश्ते सिर्फ मुलाकातों से नहीं, एहसासों से भी बनते हैं।

0: तो हम फिर मिलेंगे इसी स्नेह और अपने पन के साथ। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: हेलो, फरमाइश।

कोई अपना बनकर ही सबसे बड़ा दर्द दे जाता है, एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाता है जो ताउम्र आपके साथ रहता है, भीतर और बाहर। सबसे बड़ी यातना वही है जब कोई तुम्हारा सब कुछ होकर भी तुम्हारा कुछ ना रह जाए। और ये पीड़ा हर रात, हर सुबह, हर पल, हर सन्नाटे में हमें भीतर ही भीतर तोड़ देती है, भीतर ही भीतर तोड़ देती है।

अजीब सा रिश्ता बन जाता है कभी कभी किसी से, न जीते बनता है न मरते बनता है। दिल टूट फूट जाता है, जिंदगी बेरंग सी नजर आने लगती है और जिंदगी का सफर टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर सुनसान रास्तों की ओर चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। बेहद त्रासद है इन दिनों बीमार लोगों में खोजना खुद को, पता नहीं कब छूकर जिसे जागेंगे एहसास, लंबी बेहोशी के बाद पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा, पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा।

कभी कभी कोई इंसान एक पल को सब कुछ लगने लगता है और फिर जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बात जो शुरू होनी थी शुरू ही नहीं हो पाती, वो बात जो हम कहना चाहते थे कह ही नहीं पाते। आह, कैसा दर्द होता है ये। और हम तब चुपचाप भारी कदमों से लौट आते हैं फिर से उसी रंगहीन दुनिया में। दस्तक दी मैंने, खुला नहीं दरवाजा, खटखटाया बार बार, दीवार थी वहां, हाँ दरवाजे में दीवार।

एक सुकून भरे रिश्ते की तलाश सभी को होती है ना? आपको भी है ना? पर कहाँ मिलता है वो रिश्ता हर एक को? शब्द चाहिए थे मुझे, प्यार भरे शब्द। कहीं कहीं कुछ शब्द मिले भी, पर अफसोस उनमें अर्थ नहीं था, भाव नहीं था, एहसास भी नहीं था। अब ऐसे शब्दों का

कभी कभी आपको रौंदकर भी गुजर जाते हैं कुछ लोग, और आप दबे कुचले से उस नुकीली चुभन को सहते चले जाते हैं। तब लगता है जैसे हर लम्हा ढल रही हूं मैं, रात बनकर उतर रही हूं मैं, जिंदगी जी रही हूं या जिंदगी को कुतर रही हूं मैं। हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, लफ्ज़ बनकर पिघल रही हूं मैं, लफ्ज़ बनकर पिघल रही हूं मैं।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: सभी विविध भारती सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने में। नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं, मैं हूं आज आपके साथ पूजा नरानिया। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आज जन्मदिन है उस फिल्मकार का जिन्होंने भारतीय सिनेमा को परिवार, रिश्तों और संगीत की खूबसूरत सौगात दी। राजकुमार बड़जात्या जी की फिल्मों की गर्माहट आज भी हर दिल को अपनेपन का एहसास कराती है और आज तराने नए पुराने कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं उनकी फिल्मों के वही सदाबहार गीत। हम साथ साथ हैं इस फिल्म से ये गीत। इस गीत को लिखा है आर किरण ने। अलका याग्निक, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और हरिहरन की आवाजें।

मारे हिबड़ा में नाचे मोर, ये गीत अभी आप सुन रहे थे हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पोडवाल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम हम साथ साथ हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म गौरी से। रवि के संगीत से सजा गीत, आर कृष्णा ने इस गीत के बोल लिखे हैं और आवाज है लता मंगेशकर की।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत प्रेम रतन धन पायो फिल्म से पलक मुश्ताल और साथियों की स्वरों में। इरशाद कामिल ने इस गीत की रचना की है और धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म से। अभी आपने ये गीत सुना, लीजिए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अगला गीत, प्रेम कहानी फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे क्यों है, क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: तुम्हें याद करते करते
3: छाया गीत
2: लग जा गले।
3: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
4: तेरे मेरे सपने अब
3: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
4: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
3: याद रहे। ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
5: अभी आपने गीत सुना विवाह फिल्म से। इस गीत के बाद अब वक्त है समाचारों का। इस कार्यक्रम के शेष गीत आपको समाचारों के बाद

0: सुनवाए जाएंगे। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। हिंदी में समाचार अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
3: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
2: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर

0: 6:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में हम अपने प्राइमरी चैनल से रिले करते हैं।
1: बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री हा आज नई दिल्ली मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले करी मुलाकात। बतेन के बस्तर मा पुराना सुरक्षा शिविर मल्ला जन सुविधा के रूप मा विकसित करे जावा थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हा कहिन की छत्तीसगढ़ के आजीविका मॉडल देश भर बर प्रेरणादायी है। औ आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के मौका मा आकाशवाणी रायपुर कालीबिहनिया वाकाथन के आयोजन करही। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले मुलाकात करीन। ए मौका मा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र मा होवत सकारात्मक बदलाव जन कल्याणकारी पहलू और विकास कामला ले के गोट बात करीन। मुख्यमंत्री हा श्री शाह ला बताइन की बस्तर क्षेत्र मा पुराना सुरक्षा शिविर मनला अब धीरे धीरे जन सुविधा केंद्र के रूप मा विकसित करे जावत है। जिहां गांव के मनखे मनला स्वास्थ्य शिक्षा बैंकिंग और आने आने शासकीय योजना ले जुड़े सुविधा एक ही जगह मा उपलब्ध होवत है। मुख्यमंत्री हा केंद्रीय गृह मंत्री ला बस्तर क्षेत्र मा चलाए जात मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान और बस्तर मुन्ने अभियान के बारे मा घलो जानकारी दीन। ए मौका मा राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घलो मौजूद रहीन। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हा अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरिया दिन आज रायपुर के सेरी खेड़ी स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर के दौरा करीन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत संचालित एक केंद्र मा उमन हा महिला स्व सहायता समूह डाहर ले करे जात नवाचार और आजीविका गतिविधि के निरीक्षण करीन। ए दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हा विशेष रूप ले माइलोगन मंडाहर ले संचालित एकीकृत बकरी पालन अजा परियोजना और अच्छा बाजार लिंकेज के तारीफ करत हुए एला देश भर बर एक अनुकरणीय मॉडल बताइन। केंद्रीय राज्य मंत्री हा छत्तीसगढ़ के आजीविका मॉडल ला आने राज्य मन बर प्रेरणा स्रोत बतात हुए अधिकारी मन ला ए योजना के और ज्यादा विस्तार ऊपर जोर दे बर कहिन। ए बेरा मा श्री पासवान हा नवा रायपुर मा संचालित ई ऑटो सेवा प्रोजेक्ट पिंक दीदी के घलो सराहना करीन। एकर पहली केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पासवान हा राज्यपाल रमन डेका ले लोक भवन मा सौजन्य भेंट करीन। ए बेरा मा राज्यपाल हा शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके उखर स्वागत और सम्मान करीन। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल हा आज हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के परिणाम घोषित कर दे है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हा मंत्रालय ले बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी करीन। हाई स्कूल के परीक्षा ए बछर 58.39% और हायर सेकेंडरी परीक्षा मा 71% विद्यार्थी पास हुए है। केंद्र सरकार हा कहिन है कि पूरा देश मा पर्याप्त मात्रा मा कच्चा तेल एलपीजी और प्राकृतिक गैस के उपलब्धता सुनिश्चित करे बर प्रभावी कदम उठाए गए है। आज नई दिल्ली मा पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम ऊपर आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग ला संबोधित करत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा हा कहिन कि पूरा देश मा घरेलू एलपीजी के आपूर्ति सुचारू रूप ले चलत है और कोनो ला भी डिस्ट्रीब्यूशन शिप मा स्टॉक खत्म होए के कोई सूचना नहीं मिले है। चिकित्सा शिक्षा विभाग हा प्रदेश के सिकल सेल संस्थान मनला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप मा विकसित करे बर लगभग 85 करोड़ रुपया के राशि स्वीकृत करे है। एकर तहत सिकल सेल संस्थान मा उच्च स्तरीय आधुनिक लैब के निर्माण करे जाही जेखर ले मरीज मनला तुरते ही सही जांच रिपोर्ट मिल सकी और समय मा उखर इलाज शुरू हो सकी। एकर अलावा विशेषज्ञ डॉक्टर के उपलब्धता ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुविधा और जेनेटिक काउंसलिंग जैसन सेवा घलो एक ही छत के नीचे मिल सकी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा कहिन है कि ए संस्थान इलाज के संग रोकथाम और जागरूकता के दिशा में घलो मील के पत्थर साबित होही। नवजात शिशु मन के स्क्रीनिंग लेके वाहक दंपत्ति के काउंसलिंग तक एक केंद्र छत्तीसगढ़ में सिकल सेल उन्मूलन अभियान ला नवा गति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत संबंधी अपील के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हा घलो अपन सुरक्षा में लगे फॉलोअप और काफिला में शामिल गाड़ी मन के संख्या ला कम करे के निर्देश दे है। उमन कहिन है कि वर्तमान वैश्विक संकट और ऊर्जा संरक्षण के आवश्यकता ला देखत हुए संसाधन के संतुलित उपयोग समय के मांग है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 11वां दीक्षांत समारोह का

0: 15 मई के आयोजित करे जाही। समारोह के अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका करही। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह के मुख्य अतिथि होही। दीक्षांत समारोह में 1880 विद्यार्थी मन ला उपाधि दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़बो बाचे समाचार कोती। आकाशवाणी के 90 बच्चर पूरा होए के मौका मा आकाशवाणी रायपुर काली 15 मई के वाकाथन के आयोजन करही। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर हा बताइन की ए वाकाथन मा आकाशवाणी के कर्मचारी सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी समाचार वाचक आउटसोर्स कर्मचारी श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होही। वाकाथन के शुरुआत बिहनिया 7 बजे आकाशवाणी भवन सिविल लाइन्स ले हुई। ए वाकाथन घड़ी चौक मोतीबाग सुभाष स्टेडियम और OCM चौक होवत वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न हुई। ए आयोजन ऑल इंडिया रेडियो के 90 बच्चर के गौरवशाली यात्रा के याद में करे जाते। राजनाथ गांव के वेटलिफ्टर खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव हा सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप मा अच्छा प्रदर्शन करत हुए 53 किलोग्राम वर्ग मा रजत और कांस्य पदक जीते है। ज्ञानेश्वरी हा स्नैच मा 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क मा 106 किलोग्राम वजन उठा के अच्छा प्रदर्शन करी। ए उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा ज्ञानेश्वरी ला बधाई और शुभकामना दिन। उमन कहिन की ज्ञानेश्वरी यादव के सफलता पूरा प्रदेश के युवा विशेषकर बेटी मन बर प्रेरणादायक है। जांजगीर चांपा जिला के भवरतरा गांव में एके परिवार के 4 लोगन मन के हत्या करे के मामला आगू आए है। ए मामला मा पुलिस हा 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। जानबा के मुताबिक शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलत पिता बेटा मिलके अपने परिवार के 4 लोगन मन ऊपर सोवत समय टंगियाले हमला करके उखर हत्या कर दिन। घटना के जानकारी मिलत ही पुलिस के आला अधिकारी मौका मा पहुंच के जांच शुरू करी। बताया जात है कि मुख्य आरोपी हा 15 बच्चर पहली अपन छोटे भाई के हत्या करे रहीस और 1.5 बच्चर पहली जेल ले रिहा हो रहीस। उहे गौरेला पेंडा मरवाही जिला के ग्राम दौंजरा के बिझरवार मा घलो जमीन के लड़ाई झगड़ा के चलत एके परिवार की 2 पक्ष मा होई विवाद मा 7 लोगन घायल हो गए है। घायल मन के इलाज जिला अस्पताल में चलत है। पुलिस मामला के जांच करत है। दुर्ग पुलिस साइबर ठगी के मामला मा कार्रवाई करत हुए जिला मा 362 संदिग्ध म्यूल खाता धारक मन के खिलाफ FIR दर्ज करे है। ए कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश और समन्वय पोर्टल ले मिले जानबा के आधार मा करे गए है। जांच मा सुपेला उतई और पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के आने आने बैंक मन के खाता मा साइबर ठगी के रकम के लेन देन के सबूत मिले है। पुलिस बताइन की ए खाता के इस्तेमाल ठगी के रकम ला छिपाए और ट्रांसफर करे मा करे गए है। रायपुर के भनपुरी स्थित केंद्रीय पेट्रोल रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान मा आने आने डिप्लोमा पाठ्यक्रम मा प्रवेश बर आवेदन के अंतिम तिथि 30 मई निर्धारित करे गए है। सिपेट रायपुर के प्रमुख डॉक्टर आलोक साहू हा बताइन की डिप्लोमा पाठ्यक्रम मा प्रवेश बर 7 जून के देश भर मा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करे जाही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फिर। मुख्यमंत्री हा आज नई दिल्ली मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले करीन मुलाकात। बताइन की बस्तर मा पुराना सुरक्षा शिविर मल्ला जन सुविधा के रूप मा विकसित करे जावत है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हा कहिन की छत्तीसगढ़ के आजीविका मॉडल देश भर बर प्रेरणादायी है और आकाशवाणी के 90 बच्चर पूरा होए के मौका मा आकाशवाणी रायपुर काली बिहनिया वाकाथन के आयोजन करही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।

एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोकसुर। लोकसुर में पहले आइए सुनते हैं भैया लाल हिड़ाऊ और साथियों के स्वर में ये गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अब आप सुनेंगे घासीदास मानिकपुरी और सुभाषिनी छत्तर के स्वर में ये गीत। इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले श्रोता हैं ये भाटापारा से मिलवदास, संतोष, संदीप और कुलदीप, बेमेत्रा से पूर्णिमा, सारथी, पूजा, आरती, भव्या सारथी और सुषमा सारथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, बाजारपारा बेमेत्रा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लकी सिन्हा और मुरली मनोहर पटेल, शीतला नगर दुर्ग से शिवचंद्राकर और भगवान चंद्राकर, कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा और दिनेश सेन, रामनगर रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे और पूजा अंबादे, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा और ओजल वर्मा।

द्वारिका यादव और सरस्वती निषाद के स्वर में लीजिए सुनिए ये गीत। इस गीत को आप सभी ने पसंद किया है। बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र और वृजकांत सारथी, पावर हाउस भिलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान और पूजा प्रधान, ग्राम पाहरा अहिवारा से पोषण बनछोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बनछोर, सिमगा से डॉक्टर प्रदीप, सविता जैन और देवेंद्र जैन, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम और कुमारी डब्लू डोम, दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु और लक्ष्मीना यदु, श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल, ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन।

0: सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अशोक कुमार साहू और देवकी जंघेल के स्वर में सुनिए ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, कुमारी भाव्या और प्रियांश देवांगन।

अंजुला सिंह और सुमित्रा बैनर्जी के स्वर में सुनिए ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। रुआ बांधा शनिश्री बाजार, भिलाई से सुशील जैन, श्रेया जैन, कल्पना जैन, शौर्य जैन, शुभम जैन और सौरभ जैन, गांव परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारणी मसिया और खुमेंद्र मसिया।

0: छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोकसुर अब यहीं समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:48 होने को है। प्रादेशिक समाचार हिंदी में हम अपने प्राइमरी चैनल से रिले करते हैं।
1: और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया कि बस्तर में पुराने सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ का आजीविका मॉडल देशभर के लिए प्रेरणादायी है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए गए और आकाशवाणी रायपुर कल सुबह वॉकथन का आयोजन करेगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों, जनकल्याणकारी पहलों और विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने श्री शाह को बताया कि बस्तर क्षेत्र में पुराने सुरक्षा शिविरों को अब धीरे धीरे जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और विभिन्न शासकीय योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बस्तर क्षेत्र में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान और बस्तर मुन्ने अभियान के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज रायपुर के सेरीखेड़ी स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रीय

0: ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत संचालित इस केंद्र में उन्होंने महिला स्व सहायता समूह द्वारा किए जा रहे नवाचारों और आजीविका गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित एकीकृत बकरी पालन अजा परियोजना और बेहतर बाजार लिंकेज की प्रशंसा करते हुए इसे देशभर के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ के आजीविका मॉडल को अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए अधिकारियों को इन योजनाओं के और अधिक विस्तार पर जोर देने को कहा। इस मौके पर श्री पासवान ने नवा रायपुर में संचालित ई ऑटो सेवा प्रोजेक्ट पिंक दीदी की भी सराहना की। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पासवान ने राज्यपाल रमेश डेका से लोकभवन में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कल 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। धान के एमएसपी में प्रति क्विंटल 72 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मंत्रालय से बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी किए। हाईस्कूल की परीक्षा में इस वर्ष 58.39% और हायर सेकेंडरी परीक्षा में 71% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत संबंधी अपील के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी अपनी सुरक्षा में लगे फॉलोअप और काफिले में शामिल वाहनों की संख्या को कम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक संकटों और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकताओं को देखते हुए संसाधनों का संतुलित उपयोग समय की मांग है। इस बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित कुछ जनप्रतिनिधियों ने आगामी कुछ समय तक बड़े वाहनों के बजाय ई रिक्शा का उपयोग करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अनुशंसाओं पर हुई कार्रवाई की जानकारी ली और अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इसके लिए उन्होंने डेटा आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह कल 15 मई को आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल रमेश डेका करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। दीक्षांत समारोह में 1880 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर कल सुबह वॉकथन का आयोजन करेगा। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि इस वॉकथन में आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, समाचार वाचक, आउटसोर्स कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वॉकथन की शुरुआत सुबह 7 बजे आकाशवाणी भवन सिविल लाइन से होगी। यह वॉकथन घड़ी चौक, मोतीबाग, सुभाष स्टेडियम और ओसीएम चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न होगा। यह आयोजन ऑल इंडिया रेडियो की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की स्मृति में किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजनांदगांव की वेटलिफ्टर खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने सीनियर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 106 किलोग्राम वजन उठाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानेश्वरी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जांजगीर चांपा जिले के भवंतरा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते पिता पुत्र ने मिलकर अपने ही परिवार के चार सदस्यों पर सोते समय टंगिया से हमला कर उनकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। वहीं गौरेला

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते पिता पुत्र ने मिलकर अपने ही परिवार के चार सदस्यों पर सोते समय टंगिया से हमला कर उनकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। वहीं गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के ग्राम दौंजरा के बिरझरवार में भी जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुए विवाद में 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए जिले के 362 संदिग्ध म्यूल खाताधारकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश और समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर की गई। जांच में सुपेला, उतई और पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के खातों में साइबर ठगी की रकम के लेन देन के सबूत मिले हैं। पुलिस ने बताया कि इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को छिपाने और ट्रांसफर करने में किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्वी मध्यप्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। वहीं एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका भी विस्तारित है। इसके असर से कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में जयपुर से 3 और गुरुग्राम तथा नासिक से एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोंडागांव में प्रधान जिला और सत्र न्यायालय भवन का भूमि पूजन किया। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित GD कांस्टेबल और GD राइफलमैन की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 31 मई को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रायपुर के बंगोली स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने आज पेट्रोल पंप संचालकों और पेट्रोलियम कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। रायपुर के भनपुरी स्थित केंद्रीय पेट्रोल रसायन अभियंत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई है। चांपा रेलवे स्टेशन पर चौथी रेल लाइन जोड़ने के लिए 7 से 19 जून तक काम चलेगा। इस दौरान 63 मेल एक्सप्रेस और 10 मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके अलावा 6 ट्रेनें बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी। नारायणपुर पुलिस ने माण मैत्री चौपाल कार्यक्रम के तहत तेरदुल, बिंजली, सोनपुर और कुड़मेल गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान कुछ युवाओं को माण मित्र के रूप में नामित किया गया। जशपुर जिले के दोकड़ा क्षेत्र में पुलिस ने एक पिकअप वाहन की तलाशी के दौरान 200 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। आरोपी गांजे को कच्चे आम की क्रेट के नीचे पैकेटों में छिपाकर ले जा रहे थे। दुर्ग पुलिस ने सूने मकान में चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 13 लाख रुपए के जेवर और नकदी बरामद की गई है। और संस्कार भारती द्वारा कल से राजधानी रायपुर के महाराष्ट्र मंडल में 3 दिवसीय रंग संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया कि बस्तर में पुराने सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ का आजीविका मॉडल देशभर के लिए प्रेरणादायी है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए गए और आकाशवाणी रायपुर कल सुबह वॉकथन का आयोजन करेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 7 बजे हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।

फौजी साथियों के इस कार्यक्रम जयमाला में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आज पूजा नरानिया। जय हिंद साथियों। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

ये देशभक्ति गीत पूरब और पश्चिम फिल्म से आपने सुना। मैं हिंद कपूर और साथियों के स्वरों में इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं भारतीय सेना गीत। गायक कलाकार, गीतकार और संगीतकार कैलाश खैर हैं।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना,
1: भारतीय सेना गीत अभी आपने सुना। गायक, कलाकार, गीतकार और संगीतकार कैलाश खैर थे। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं सदा सुहागन फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत से सजा गीत गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: सदा सुहागन इस फिल्म से अभी आपने कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत सुना और अब सुनिए एक संदेश।
1: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं फौजियों का कार्यक्रम जय माला। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्यासा सावन इस फिल्म से संतोष आनंद का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर, आवाज लता मंगेशकर की।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। इस गीत के बोलों को लिखा है इंदिवर ने और बप्पी लहरी का संगीत है आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। फिल्म का नाम मुद्दत।

आशा भोसले और मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ों में अभी आपने ये गीत सुना मुद्दत फिल्म से। अब आपको सुनवाते हैं सबसे बड़ा रुपया, इस फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, बसु मनोहरी का संगीतबद्ध किया गीत।

सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का गीत वादा करो वादा करो जानम, ये आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति फिल्म आनंद से। गायिका लता मंगेशकर हैं, गुलजार के लिखे बोल, धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

फिल्म का गीत जिसे लता मंगेशकर ने गाया, गुलजार की बोल थी सलिल चौधरी का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम जयमाला अब यहीं संपन्न होता है। जय हिंद साथियों।

आप सुन रहे हैं भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हमारे अगले कार्यक्रम की कीजिए प्रतीक्षा।

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर। आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।
1: दोस्तों, इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं उभरते गिटार वादक अनिकेत गुंडेवार, जो गिटार पर शास्त्रीय संगीत बजाते हैं। अनिकेत जी, जानना चाहेंगे सबसे पहला मंच पर जाने का मौका कब मिला आपको?
2: मंच पर जाने का क्लासिकल म्यूजिक बजाने के लिए, आई थिंक गुरु जी के, मतलब जहां मैं जाता हूँ सीखने के लिए, वो वही पर गुरु पूर्णिमा के
1: अच्छा
2: के टाइम पे जब स्टेज पे पहली बार मौका मिला था।
1: हाँ, हाँ।
2: तभी वही एक था
1: गुरुकुल के वार्षिकोत्सव।
2: हाँ,
1: एग्जैक्टली। इसके अलावा किसी ने आप प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया हो या किसी ग्रुप के साथ, किसी बैंड के साथ जुड़ने का मौका मिला हो?
2: आई थिंक जो एकदम पहले का जो प्रोमिनेंट मुझको एक परफॉर्मेंस जो याद है वो था पिंपरी चिंचवाड़ में एक स्वरजंकार म्यूजिक फेस्टिवल का ही एक था। उसमें एज एक फ्यूजन ग्रुप के पार्ट में मैं गया था।
1: अच्छा।
2: तो उस टाइम आई थिंक सितार प्लेयर थे स्टेज पे, वायलिन थे
1: जी,
2: तबला प्लेयर्स थे, ड्रमर, और फिर मैं एक उसमें से एक म्यूजिशियन था। तो वो क्लासिकल के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्चुअली मेरे लिए काफी बड़ी बात थी, क्योंकि मैं बहुत बहुत पहले पहले था, मतलब मैं जस्ट 4-5 साल ही हुए थे और मैं स्टेज पे था, बहुत नर्वस था।
1: हाँ।
2: और बाकी सब काफी एक्सपीरियंस।
1: वहाँ क्या बजाने के लिए मिला आपको, मतलब क्या बजाने के लिए कहा गया आपसे?
2: वहाँ पर वही है कि क्लासिकल म्यूजिक में काफी इम्प्रोम्प्टू चीजें काफी होती है स्टेज
1: जी,
2: पे
1: जी।
2: तो वो सीखने को काफी मिला। तो हम एक राग में कुछ फ्यूजन कॉम्पोजिशन थी, आई थिंक किरवानी राग था, और उसमें सब बजा रहे थे और बीच बीच में मुझे मेरे तरफ इशारा कर देते थे कि अच्छा अभी आप कुछ बजाइए, और फिर और वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सब एक्सपीरियंस म्यूजिशियंस होते हैं और उन्हें पता है क्या चल रहा है, बट आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हो कि पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हो। तो
1: जी जी, आपने कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी एक बनाया है बैंड?
2: हाँ, तो वो एक कलाइडोस्कोप नाम का एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है
1: जी।
2: और ये एक्चुअली काफी नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि इतने सालों से मैं एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या ही ज्यादा परफॉर्म करता आया हूँ, और क्लासिकल म्यूजिक में जो अकंपनी का जो पार्ट होता है, जो हार्मोनियम प्लेयर करते हैं या जो सारंगी वादक करते हैं वोकलिस्ट के साथ
1: जी,
2: उस तरह से मैंने कभी सोचा नहीं है ये इंस्ट्रूमेंट पर अकंपनीमेंट करने के लिए।
1: अच्छा।
2: इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का जो थॉट प्रोसेस होता है परफॉर्मेंस का और वोकलिस्ट का होता है वो काफी अलग होता है।
1: अच्छा।
2: और जिस तरह से वोकलिस्ट, क्योंकि उनके पास शब्द होते हैं, तो जब वो शब्दों को यूज करके जो सोच निकलती है उनमें से, वो एक सीखने को काफी मिलता है कि अच्छा इस तरह से भी सोच सकते हैं ये सेम आलाप को, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट पे ऐसे कर रहा हूँ, एक वोकलिस्ट किसी और तरीके से जो सोच रहा है
1: जी जी,
2: तो उससे काफी सीखने को मिलता है जब ऐसे।
1: यही अपनी सोच रखने का मौका आपको मिलता है जब आप अकेले बजा रहे हैं और कुछ।
2: हाँ, अकेले बजा रहा हूँ तो मेरी ही सोच होती है
1: बराबर,
2: जब अकंपनी कर रहा होता हूँ तो वो सोच एक्चुअली सिंगर की होती है, और आपका काम होता है कि वो सोच को कैसे आप एक तो उनकी शैडो बन के कैसे रह सकते हो वो, और प्लस उसको ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हो वो मोमेंट। ये जो दो चीजें होती है कि कहाँ बजाना है कहाँ नहीं बजाना है,
1: बिल्कुल,
2: ये सब चीजें जो नेचुरली आप सीखने लगते हो जब आप वोकलिस्ट के साथ अकंपनी करने की कोशिश करते हो
1: जी। शास्त्रीय संगीत सीखने की ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें हम किन कलाकारों को सुनते हैं, किन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है और बहुत इंस्पायरिंग होती है ये रिकॉर्डिंग्स।
2: यस यस यस।
1: आप किसका नाम लेना चाहेंगे जहां तक गिटार की बात है?
2: अच्छा, जहां तक गिटार की बात है तो दो ऐसे जायंट्स हुए हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो गिटार पे, मतलब एक तो पंडित ब्रिजभूषण काबरा जी,
1: जी बिल्कुल,
2: जो स्लाइड गिटार, हवाईयन गिटार जो उन्होंने बजाई।
1: हाँ, हाँ।
2: और फिर उसी को लेके जो आगे लेके गए वही सोच को पंडित विश्वमोहन भट्ट जी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो बड़े नाम है,
2: बहुत बड़े नाम है।
1: हाँ। और इनका योगदान बहुत विशाल है,
2: बहुत बहुत बहुत, और दोनों के स्टाइल्स भी इतने अलग है कि वो जब आप सुनते हो दोनों का म्यूजिक एकदम कुछ अलग ही चीज मतलब सुनने को मिलती है
1: जी। कभी ऐसा नहीं लगा कि एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में करियर शायद कुछ और होता और जीवन कुछ किसी और तरह का होता?
2: ऐसा नहीं लगा मुझे एक्चुअली,
1: क्योंकि अपनी पढ़ाई लिखाई एक अलग क्षेत्र में आपने की है और अब

0: पूरी तरह से कलाकार के रूप में अपना करियर बना रहे हैं?
1: नहीं, क्योंकि एक चीज ऐसी थी कि कभी ऐसा नहीं लगा कि अच्छा, अगर मतलब वो मोटिवेशन मटेरियलिस्टिक कभी नहीं था कि अच्छा इसमें पैसा ज्यादा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ।
0: हाँ,
1: वो एक्चुअली वो म्यूजिक अच्छा लग रहा है इसलिए मैं म्यूजिक कर रहा हूँ।
0: क्या बात है?
1: ये जो सोच थी वो पहले से ही थी मुझ में, तो फिर
0: क्या बात है? ये एक उस तरह की फलसफाना सोच है, फिलोसॉफिकल सोचने का जो तरीका है, बहुत अच्छे। क्या लगता है आपको और क्या होना चाहिए आपकी जिंदगी में? एक कलाकार के रूप में आपकी अपेक्षाएं क्या है?
1: मुझे जितना हो सके ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए मिलना चाहिए, उतना ही है। बाकी तो वैसे तो जो सीखने में जो मजा आता है वो तो आता ही है, रोज वो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस चल रहा होता है जब आपकी थॉट इंप्रूव होते रहती है। जो रियाज में से एक तो मैकेनिकल रियाज होता है, बट एक पॉइंट के बाद वो थॉट के लेवल पे आ जाता है कि अच्छा आप एक ही चीज को कितने तरह से बजा सकते हो या एक ही चीज को कैसे अलग तरीके से, और उसमें मजा आने लगता है। मतलब वो एक सेल्फ फुलफिलिंग चीज हो जाती है कि आप रियाज कर रहे हो और आपको वो रियाज में से ही इतना सब मिल रहा है कि आप एक्चुअली बहुत कुछ ऐसे चीजों के पीछे भागना कम हो जाता है एक पॉइंट के बाद।
0: ऑडियंस भी बहुत बदल गई है। एक जमाना था जब लाइव शोज लोग देखने जाते थे और कुछ होता नहीं था, रेडियो पे सुनते थे क्लासिकल म्यूजिक, बाद में दूरदर्शन आया, उसके बाद सैटेलाइट चैनल्स आए, बहुत सारे ऑप्शंस थे लोगों के पास देखने के लिए। अब तो इंटरनेट के जरिए जब चाहे जो चाहे हम देख सुन सकते हैं। तो आपको क्या फर्क मालूम पड़ता है अब और ऐसी बदली हुई ऑडियंस और खासतौर से यंग जनरेशन, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे मंच पर?
1: क्या करना चाहूंगा?
0: क्योंकि उनकी सोच की उन्हें जो अच्छा लगता है उनकी पसंद नापसंद को देखते हुए।
1: तो अभी एक्चुअली हो कैसे गए, और इससे एक्चुअली हम एज एन आर्टिस्ट भी काफी गुजरते हैं, क्योंकि हम लोग जब एज अ रेफरेंस मटेरियल सुन रहे होते हैं म्यूजिक, तो हम लोग उस्ताद आमिर खान जी का सुन रहे होते हैं, उस्ताद पंडित भीमसेन जोशी,
0: और
1: वो टाइम का जो म्यूजिक था जब बहुत ज्यादा ठहराव था, एक राग डेढ़ घंटा दो घंटा गाते थे वो लोग।
0: जी जी जी।
1: और ये तो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स है, मतलब ऐसा तो सुना है कि तीन चार घंटा भी गाते थे तब।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक ही राग तीन तीन चार चार घंटे चलता था।
1: ये चीज हमने नहीं देखी, हमारी जनरेशन ने कभी देखी नहीं, हमने सिर्फ कितना सुना है उतना।
0: हाँ।
1: और होता कैसा है, जब आप ये सुन रहे होते हो तो आपका म्यूजिक भी वैसा होने लगता है कि आपको भी स्लो अलाप करना पसंद आने लगता है। और
0: अच्छा।
1: लेकिन जब आप पहली बार ऑडियंस के सामने जाते हो तो वो नहीं चल सकता है, क्योंकि आपका स्लॉट ही 45 मिनट्स का होता है या 30 मिनट्स का होता है, और उसमें आप आधा घंटा अलाप तो कर नहीं सकते। ये जो सोच है ना, ये एक्चुअली हमारे गुरु जी ने काफी इसके बारे में गाइड किया है, क्योंकि और मैंने ये चीज बहुत नोटिस की है क्लासिकल म्यूजिक में स्पेशली, जितने एक्सपीरियंस आर्टिस्ट होते हैं उतने ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। उनको एग्जैक्टली पता होता है कि अच्छा अभी ये सिचुएशन में ऐसे करना है। आपका एक प्रैक्टिस रूम में जो होता है वो एक अलग है, जब आप ऑडियंस के सामने जाते हो तो अलग होता है। ऑडियंस के हिसाब से थोड़ा चेंज करना ही पड़ता है, मतलब उस तो थोड़ा फास्ट पेस्ड होता है, तो अभी अगर मेरे पास आधे घंटे का स्लॉट है तो मैं आलाप बहुत नहीं कर सकता हूँ, और ऑडियंस भी उतना आलाप एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, एक टाइम के बाद फोकस शिफ्ट होने लगता है। तो फिर उस तरह से जिस ऑडियंस के सामने आप हो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा
0: अपने प्रेजेंटेशन को डिजाइन करना पड़ता है,
1: प्रेजेंटेशन को थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़ता है। बहुत बार स्टेज पे आपको दिख रहा होता है कि अच्छा अभी ऑडियंस नहीं पकड़ में नहीं, अभी थोड़ा ड्रिफ्ट हो रही है उनके थॉट, तो फिर आपको थोड़ा ट्राई करके देखना पड़ता है अच्छा अभी ये अच्छा लग रहा है तो फिर इस तरह से बजाते हैं।
0: कभी ऐसा हुआ होगा कि आप मंच पर है, आपने शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक, मगर सामने ऑडियंस शायद कुछ और सुनना चाहती है?
1: नहीं, लेकिन अभी अब मंच पर जब बुलाया जाता है तो क्लासिकल म्यूजिक के लिए बुलाया जाता है, तो तब एक बात होती है कि आप प्रेजेंटेशन थोड़ा मॉडिफाई करो ताकि आप ऑडियंस को कैप्चर कर पाओ एज एन आर्टिस्ट। और एक बात होती है कि आप परफॉर्मेंस ही चेंज कर दो, अभी अगर आप म्यूजिक ही चेंज कर दोगे फिर उसका कोई पॉइंट नहीं होता है, तो आप जितना प्योर रख सकते हो क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट में क्लासिकल म्यूजिक प्योर होना ही चाहिए।
0: बिल्कुल, वो तो बात है,
1: और उसी के अंदर काफी स्कोप है आपको डिजाइन करने का, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक शुरू बहुत स्लो टेम्पो से होता है और जा भी बहुत फास्ट टेम्पो तक, तो वो रेंज बहुत है, तो आप उसी में काफी कुछ कर सकते हो। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कुछ और ही बजाने लगो ताकि
0: जी, जी।
1: आप ऑडियंस को कैप्चर करो।
0: हाँ। और आपके अब तक 15-16 सालों से आप सीख रहे हैं, बहुत से राग अब तक आपके रियाज में आ चुके होंगे,
1: राइट?
0: कौन सा राग आपको फेवरेट लगता है अपना?
1: ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि ये हर 2-3 महीने में फोकस ही चेंज हो जाता है कि अच्छा अभी ये राग में थोड़ा और
0: अच्छा,
1: फिर
0: अच्छा अच्छा
1: फिर नया राग शुरू हो जाता है। तो हम लोग कुछ ऐसे राग होते हैं जो हमेशा उसमें रिटर्न आते ही है, कहीं भी नया राग हो कुछ भी हो तो भी, तो जैसे जोग हो गया, बिहाग हो गया, मालकाउंस, चारुकेशी, किरवानी,
0: अच्छा,
1: भैरव, ये राग एक्चुअली मतलब ये दे आर कंसेप्ट इन देमसेल्व्स, ऐसे बोल सकते हो कि आप भैरव हो गया तो भैरव का एक कंसेप्ट होता है जो आपको अगर समझ में आया तो फिर आप अलग अलग तरह के भैरव बजा सकते हो।
0: अच्छा।
1: या मालकाउंस का एक

0: एक्सेप्ट होता है,
1: हाँ,
0: वो एक बार समझ में आ गया तो आप अलग अलग तरह के काउंट्स बजा सकते हो। तो ये जो बेसिक्स है उसमें तो करते ही रहना पड़ता है।
1: अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप हाथ से भी बजा रहे हैं, मतलब उंगलियों से।
0: हाँ।
1: और आपके एक उंगली में एक स्टील का रॉड लगा हुआ है, इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आप, वो भी जरा बताइए।
0: ओके, ये एक्चुअली वीडियो में ज्यादा बेटर समझ में आएगा अभी ऑडियो में, लेकिन गिटार पर क्या होता है ना, एक स्लाइड एक कंसेप्ट है
1: जी,
0: जो मैंने पहले बोला था ब्लूज गिटार में। वो क्या होता है, पाइप जैसा एक स्लाइड होता है जो आपके रिंग फिंगर के ऊपर आप लगा देते हो और उससे आप स्लाइड कर सकते हो। जैसे मेरा साउंड आ रहा है, सिमिलर साउंड आएगा उसमें से भी,
1: जी,
0: लेकिन उसमें फिंगर ब्लॉक हो जाती है। तो अब मैं जब, मेरे गुरुजी वायलिनिस्ट है तो मैं वायलिन सुन सुन के सीख रहा था, और थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगने लग गया कि अरे फ्रेट्स के वजह से मुझको वो स्मूथनेस आई नहीं रही है जो वायलिन पे आती है।
1: अच्छा।
0: वो फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है।
1: हाँ, हाँ।
0: और वो बहुत प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट है।
1: जी।
0: तो मैं एक्चुअली ऑनलाइन ढूंढने लग गया और मुझे ये एक स्लाइड मेकर है जो US में है।
1: अच्छा।
0: वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनको आपको रिंग फिंगर का साइज देना होता है और फिर वो
1: बना करके
0: बना
1: आपको
0: करके
1: भेज देते
0: भेजते
1: हैं।
0: हैं।
1: अच्छा।

0: थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगने लग गया कि अरे फ्रेट्स के वजह से मुझको वो स्मूथनेस आई नहीं रही है जो वायलिन पे आती है।
1: अच्छा।
0: वो फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है।
1: हाँ हाँ।
0: और वो बहुत प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट है।
1: जी।
0: तो मैं एक्चुअली ऑनलाइन ढूंढने लग गया और मुझे ये एक स्लाइड मेकर है जो यूएस में है।
1: अच्छा।
0: वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उनको आपको रिंग फिंगर का साइज देना होता है और फिर वो
1: बना करके
0: भेजते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो उनसे मैंने ऑर्डर किया और फिर मैंने सीखने लग गया। तो बेसिकली ये एक रिंग है, मतलब जो जो अपनी नॉर्मल रिंग होती है वैसी रिंग है।
1: जी जी।
0: और उसको एक बार अटैच्ड है।
1: हुँ.
0: और वो बार मोहन वीणा का जो बार होता है वैसा ही है, बट बहुत छोटा वर्जन है उसका।
1: अच्छा।
0: और बस वो जब यूज कर रहा होता हो तो मैं मेरी फिंगर से उसको पोजिशन में रखता हूँ, और
1: हाँ।
0: जब नहीं यूज करना हो तो वो पीछे लटकते रहता है और वो फिंगर भी फ्री हो जाती है, तो मैं
1: अच्छा
0: फिंगर से भी बजा सकता हूँ।
1: अच्छा। तो अब उस धुन की तरफ बढ़ते हैं जो आपने खुद बनाई होगी, उसकी झलक हमें सुनवाएं।
2: आप तानपुरा ले सकते हैं।
1: या कोई ऐसी धुन जो किसी और कलाकार की आपने सुनी है और आपको बहुत पसंद आई, आपने उसे रिप्रोड्यूस किया।
0: हाँ, ऐसे तो है। तो एक धुन है राग देश में।
1: जी।
0: जो एक्चुअली मैंने रिप्रोड्यूस करने से ज्यादा सीखी है गुरुजी से, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ी सी झलक उसका मुखड़ा।
1: स्वागत है। स्वागत है।
0: तो

अभी आप सुन रहे थे गिटारिस्ट अनिकेत गुंडेवार से जयंत पात्रकर की बातचीत की दूसरी कड़ी। तीसरी कड़ी लेकर हाजिर होंगे अगले सप्ताह। विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 8 बजे हैं, प्रस्तुत है सबरंग।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सबरंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रज्ञा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कल की सुबह एक बहुत ही खास संदेश लेकर आने वाली है। कल यानी 15 मई को हम मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। इसी उपलक्ष्य पर आज सबरंग की ये महफिल सजेगी उन यादों, उन किस्सों और उन एहसासों के साथ जो हमें हमारे अपनों से जोड़ते हैं। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि इंसान जड़ों से कटकर सूख जाता है, और ये जड़ें क्या हैं? ये जड़ें हमारा परिवार ही तो हैं। आज मन की स्मृतियों के उस बगीचे में टहल रहा है जहां दादा दादी के संस्कार खाद और पानी का काम करते थे। याद है वो दौर जब घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा एक अनुशासन होता था। उनके खांसने भर से घर की शोर शराबे वाली गलियों में सन्नाटा पसर जाता था, लेकिन उस सन्नाटे में डर नहीं बल्कि एक गहरा सम्मान और सुरक्षा का भाव छिपा होता था। आज हम भले ही आधुनिकता की दौड़ में बहुत आगे निकल गए हों, लेकिन वो जो फैमिली वैल्यूज की बुनियाद थी वही आज भी हमारे वजूद को थामे हुए है। आइए इसी सम्मान और प्रेम को समर्पित सुनते हैं ये गीत।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: साथियों, घर का दिल उसकी रसोई में धड़कता है। आज जब हम डाइनिंग टेबल पर अलग अलग समय पर खाना खाते हैं तो वो पुरानी रसोई बरबस याद आती है, जहां माँ चूल्हे के पास बैठती थीं और हम सब कतार में बैठकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते थे। वो चूल्हे की सौंधी खुशबू और गर्मा गर्म रोटियों के साथ मिलने वाला प्यार दुनिया के किसी भी 5-स्टार होटल के मेन्यू में नहीं मिल सकता। वहां केवल खाना नहीं पकता था, वहां संवाद पकते थे। वहां दिन भर की थकान मिटती थी और छोटी छोटी खुशियों का उत्सव मनाया जाता था। परिवार का वो साझा स्वाद

0: आज ही हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। इसी स्वाद और स्नेह को याद करते हुए सुनते हैं ये सुरीला नगमा।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरक्रिया लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: श्रोताओं, आज की प्राइवेसी और कंक्रीट के फ्लैट्स के दौर में वो बड़ा सा कच्चा आंगन कहीं खो गया है। वो आंगन जहां गर्मियों की रातों में चारपाइयां लगती थीं और आसमान के तारों को गिनते गिनते कहानियों का सफर शुरू होता था। उस खुले आसमान के नीचे पूरा परिवार एक साथ सोता था, जहां हवा के झोंकों के साथ बड़ों की नसीहतें और अपनों की मौजूदगी का सुकून मिलता था। आज हमारे पास एयर कंडीशनड कमरे तो हैं, लेकिन वो जो अपनी अपनों की सांसों की गर्माहट और तारों भरी रातों का जादू था, वो अब केवल स्मृतियों के संदूक में बंद है। आज सबरंग में हम उसी पुराने आंगन की धूल झाड़ रहे हैं। चलिए इस याद को ताजा करते हैं इस गीत के जरिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: साथियों, जीवन हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। धूप छांव की इस लुका छिपी में जब कभी हम लड़खड़ाए तो सबसे पहले थामने वाला हाथ किसका था? बेशक वो परिवार ही था। परिवार वो अदृश्य ढाल है जो दुनिया की हर मुसीबत और हमारे बीच खड़ी हो जाती है। जब बाहर की दुनिया हमें नकार देती है तब घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले मिलते हैं। वो पिता के कंधे पर हाथ रखना और भाई बहनों का हम है न कहना ही हमें फिर से लड़ने की ताकत देता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इसी अटूट भरोसे और सुरक्षा का जश्न है। आइए परिवार की इस ताकत को सलाम करते हैं इस मधुर संगीत के साथ।

श्रोताओं, आज एक विडंबना भी हमारे सामने है। एक ही सोफे पर बैठे चार लोग अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन में खोए रहते हैं। हम सात समंदर पार बैठे लोगों से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन बगल में बैठे अपनों से कटते जा रहे हैं। कल जब हम परिवार दिवस मनाएंगे तो क्यों ना एक छोटा सा संकल्प लें, कम से कम एक घंटा बिना मोबाइल के केवल अपनी माँ की बातों, पिता के अनुभवों और बच्चों की शरारतों के नाम कर दें। याद रखिए, गैजेट्स बदलते रहेंगे लेकिन परिवार एक ही बार मिलता है। चलिए दूरियों को कम करने की एक कोशिश करते हैं और जुड़ते हैं इस प्यारे से नगमे से।

सब रंग समाप्त हुआ, इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त प्रज्ञा को दीजिए इजाजत। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।

लीजिए, अंतराल का वक्त खत्म हुआ और हम फिर से लौट आए हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं तरकीब फिल्म से जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में, निदा फाजली का लिखा, आदेश श्रीवास्तव का संगीत पर किया गीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शेंडे, कलापनी कोमाकली की आवाजों में पहेली फिल्म का गीत। संगीत पद किया है इस गीत को MM करीम ने।

पहली फिल्म का गीत सुन रहे थे आप सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शिंदे और कलापनी कोमाकली की आवाजों में। अगला गीत

गली में चांद निकला जख्म फिल्म से। अलका याग्निक की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत MM करीम का ही है। फिल्म का नाम जख्म।

जख्म फिल्म से अलका याग्निक का गाया गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल थे, एमएम करीम का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है।

0: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरल

0: में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महा

सचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात कर उन्हें एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 एआईएडीएमके विधायकों ने ओएस मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी

0: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी।

0: साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गीत नया रास्ता फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी का लिखा गीत एंड दत्ता का संगीत।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। आरजी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत लिखा है गुलजार ने, आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है गोलमाल।

फिल्म गोलमाल से लता मंगेशकर का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अगला गीत। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, राजेश रोशन के संगीत से सजा, फिल्म काला पत्थर का गीत।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है घर। गुलजार की बोल आर डी बर्मन का।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार का लिखा, आरजी बर्मन का संगीतबद्ध किया, फिल्म घर से।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आशा भोसले का गाया ये गीत सुनिए। शहरयार ने इस गीत को लिखा है, खय्याम का संगीत है, फिल्म का नाम उमराओ जान।

0: उमराव जान फिल्म से ये गीत आपने अभी सुना। शहरयार का लिखा, खय्याम के संगीत से सजा, आशा भोसले की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी, 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपके लिए की ये आखिरी प्रस्तुति। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शागिर्द फिल्म का गीत है। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत से सजा, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए यहीं संपन्न होता है।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

आइए सुनते हैं फिल्म ताल का गीत। आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार ए आर रहमान।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार बहुत है जन, जन के द्वार।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लीजिए सुनिए फिल्म यस बॉस का गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार जतिन ललित।

आइए सुनते हैं फिल्म आरजू का गीत, आवाज है अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार अनु मलिक।

0: चित्रपट संगीत यहीं समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 10 बजे हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।
1: वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। पारिजात की खुशबुओं से मुअत्तर ये हसीन रात, सहमे गुलशन में फूलों के हसीन साए, चांद सितारों की ये चिलमन, शोख नजारों की ये अंगड़ाइयां, तो धड़कनों की जुबानी मोहब्बत की कहानी अजब समा दिखाती है। सच कहूं

नशाद हैं जो शाद भी हो जाएंगे, एक हल्के से तबस्सुम से आबाद भी हो जाएंगे। गुलशन में उनका आना कुछ ऐसा ही होता है, फूलों में खुशबू शाखों पे तराना होता है।

के आने से समा और भी पुरनूर होता गया, रात कटती गई, चांद और भी निखरता गया। क्या कहूँ, चलो उनसे ही पूछ लेती हूँ, ऐसी उलझन में कट न जाए ये तमाम रात। इश्क में दोनों तरफ कुछ ऐसा ही समा होता है, ये अफसानाए मोहब्बत हरफों में कब बयां होता है।

वो मोहब्बत, वो मुद्दतों की रवायत, मालूम यही होता है कि फिर लौट आएंगी। उनकी शोख नजरों पर निगाह करके रह जाएंगी। है शुक्र कि उनका इधर ही आना हुआ, चिलमन उठी भी नहीं और दिल आशिकाना हुआ।

रफ्तार धड़कनों की बताती है कि वो आए हैं। शाखे गुल की लचक है या शानों पे जुल्फों की बिखरी हैं लटें। ये परेशानियां वो आंखों को झुकाने की अदा, अपने आप को खुद से ही छुपाने की अदा। यूं लगता है कि आज ये दिल संभल न पाएगा, शबनमी कतरों पे रात का नूर बरस ही जाएगा।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: चाहूंगी
0: नहीं।
1: चाहूंगा ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

जाए रात। जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रंग तरंग
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरल

0: में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one